ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। आइए चलते हैं हिंदी में समाचार के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहें, क्योंकि संगति का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए सुनिए, आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान सुनेगा, भाग 182। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना झोकरकर। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनेगा। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8 समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सवनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए भाग 27।

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, 11 बजे सुनिए रंग तरंग, 12 बजे हिंदी समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर और 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, भाग 27 आज। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। गीतों भरी कहानी में आज सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका स्वर और स्वर ममता सिंह का है, संपादन सहायक काजल बदरंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत सुनेगा कार्यक्रम विवरण। शाम 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका रिजल्ट का चक्कर, लेखक हरीश दीक्षित, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। आपको फिर से बता दें आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे सुनिए रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। कल्पना जी, क्या आज की इस कड़ी को वीणा सहस्त्रबुद्धे के लिए रखा जाए? अगर आप कहें
2: बिल्कुल
1: तो।
2: जरूर विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे जी, आप वैसे कानपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने पिताजी पंडित शंकर राव बोडस एवं उनके बड़े भाई पंडित काशीनाथ बोडस जी से शिक्षा प्राप्त की संगीत की, जो पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। और उसके अलावा भी उन्होंने पंडित बलवंत राय भट्ट जी, वसंत ठकार जी, पंडित गजानन राव जोशी जी, गाना सरस्वती श्रीमती किशोरी अमोणकर जी आदि से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। और इनकी गायकी में इसीलिए ग्वालियर किराना जयपुर घराने की गायकी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जी। और गांधर्व महाविद्यालय के लिए भी बहुत काम किया, उन्हें गांधर्व मंडल की ओर से संगीत महोपाध्याय की पदवी से भी विभूषित किया जी। और इतनी उत्तम रचनाएं उन्होंने बनाई हैं
1: जी।
2: तो वीणा जी की एक रचना मैं गाकर आपको सुनाती हूँ, भोपाल तोड़ी राग जो सुबह का राग है, एक बंदिश है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।
1: स्वागत है।
2: जो मध्य लय तीन ताल में है। तो पहले मैं आपको भोपाल तोड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं हमारे सुनने वालों के लिए। तो भोपाल तोड़ी ये राग भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ है और तोड़ी अंग से गाया जाता है। इसकी जाति जो है वो औडव है, मध्यम इसमें और निषाद ये दोनों स्वर वर्जित है
1: जी।
2: रे ग ध इसमें कोमल लगते हैं। दिन का पहला प्रहर इसका समय है और वादी इसका दैवत एवं संवादी गंधार है। भक्ति भाव से ओतप्रोत यह राग बहुत ही सुंदर और सुबह के समय तो बहुत ही आनंददायक होता है।
1: तो अब कौन सी बंदिश आप प्रस्तुत करेंगे?
2: आदरणीय वीणाताई ने बनाई हुई द्रुत तीन ताल में एक बंदिश मैं आपको सुनाती हूँ। तुम बिन कौन सहाय या जग में दूसरो न कोई।
1: स्वागत है।

0: वाह, बहुत सुंदर। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धि की इस बंदिश को बड़ी ही सुंदरता से आपने प्रस्तुत किया कल्पना जी, और इस रचना को सुनते हुए हमारा मन भक्ति भाव के सागर में हिलोरे ले रहा था। और अब बताइए कि अब कौन सी रचना आप प्रस्तुत करेंगे या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: अब मैं वीणा ताई के आवाज में और उन्होंने बनाई हुई रचना राग दुर्गा में विलंबित एक ताल का एक ख्याल सुनवाना चाहूंगी।
0: प्रस्तुत है जी ये रचना।

0: आज की इस कड़ी में हम जानकारी दे रहे थे विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के बारे में और उनकी बंदिशें सुनवाई। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये कड़ी भी बहुत पसंद आएगी और कल की कड़ी में कुछ और जानकारी, कुछ और बातें हम लेकर उपस्थित होंगे। कल्पना जी, आपको धन्यवाद। अब हम यहाँ पर विदा लेते हैं आज की इस कड़ी में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से।

0: जाना।
1: अनोखी अदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद अली ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरी गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का ये गीत। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है।

0: सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उमा देवी की आवाज में चंद्रलेखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे एस राजेश्वर राव। लीजिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सुनिए नदिया के पार फिल्म का गाना। शमशाद बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
1: नन्नी सी जान में है जवानी का सितम क्यों, रग रग में नशा और नशे में है दर्द क्यों।
2: हाँ आप कहे कोई, नशे में है दर्द क्यों?
3: ये इसलिए के जिंदगी में प्यार

0: है क्यों?
1: हाँ भाई, फिर ये बेबसी क्यों?
2: ये इसलिए कि इश्क का इजहार किया जाए।

शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में नदिया के पार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसे संगीत से संवारा था सी रामचंद्र ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

साथियों, इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने गजरे फिल्म से लिया था। सुरैया की आवाज थी और इसे लिखा था गोपाल सिंह नेपाली ने और संगीत से संवारा था अनिल विश्वास ने। अभी जो गीत आप सुन रहे थे इसे भी सुरैया ने गाया था और सिंगार फिल्म का गीत था। डी एन मधोक की रचना थी और संगीतकार थे खुर्शीद अनवर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। आपके लिए एक विशेष सूचना है, सुनिए श्रोताओं। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 बरस पूरे होने को हैं, इस मौके पर आज यानी 8 मई को वॉकथॉन का आयोजन

आयोजन विविध भारती के द्वारा किया जा रहा है। इस वॉकेथॉन के लिए आप सब जमा होंगे शाम को 5 बजे गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड यानी शिवाजी महाराज ग्राउंड के सामने, और वहां से विविध भारती तक एक वॉक किया जाएगा जिसमें विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लोगों से मुलाकात की जाएगी। तो आप जरूर आइएगा गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड के सामने शाम को 5 बजे। अब सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये गीत।

0: लता मंगेशकर के आवाज में अभी आप लाडली फिल्म का गीत सुन रहे थे। इसे बहजाद लखनवी ने लिखा था और अनिल विश्वास ने इस गीत को संगीत से संवारा था।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: अब आज का हमारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी पूरे जो है हमारे सुनने वालों के लिए
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर
0: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं अनाउंसर्स हैं
2: FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस सुविचार से करते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। इस सुविचार के बाद आइए जानते हैं आज का इतिहास।

श्रोताओं, आज है 8 मई और 8 मई 1945 में आज ही के दिन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष जर्मनी का आत्मसमर्पण हुआ था। आज ही के दिन 2000 में भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए थे।

श्रोताओं अब आइए जानते हैं आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 8 मई 1929 में गिरजा देवी का जन्म हुआ था, जो भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। और 1916 में आज के दिन स्वामी चिन्मयानंद का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक तथा वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। 8 मई 1895 में गोप बंधु चौधरी का जन्म हुआ था, जो उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा गांधीवादी कार्यकर्ता थे। और आज ही के दिन 1926 में तपन राय चौधरी का भी जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे।

श्रोताओं भाई उनके बारे में जानते हैं जिनकी पुण्यतिथि आज है। 8 मई 1982 में आत्माराम राव जी देशपांडे का निधन हुआ था, जो प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार थे। 8 मई 2013 में जिया फरीदुद्दीन डागर का निधन हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। और 1993 में आज ही के दिन देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का भी निधन हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 1915 में आज ही के दिन भाई बालमुकुंद का भी निधन हुआ था, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे। आप सभी को विनम्र श्रद्धांजलि आकाशवाणी परिवार की ओर से।

श्रोताओं अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म कामचोर से। किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ों में इंद्रीवर के बोल और राजेश रोशन का संगीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, भाई जान लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का हाल और साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान। जिला जनसंपर्क कार्यालय रोहतास के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास के तत्वाधान में आगामी 9 मई 2026 दिन शनिवार को व्यवहार न्यायालय सासाराम सहित अनुमंडल न्यायालय विक्रमगंज एवं डेहरी ऑनसोन परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सुबह 10:30 से प्रारंभ होगा, जिसे लेकर आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनुज कुमार जैन एवं अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी रोहतास श्री ललित भूषण रंजन द्वारा हरी झंडी दिखाकर तीनों अनुमंडल क्षेत्र में जागरूकता और प्रचार रथ रवाना किया गया। मौके पर सचिव कुमार कृष्णदेव, डीटीओ राकेश कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष रंजन, SDPO 1 दिलीप कुमार मौजूद रहे। बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक समझौता योग्य मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना, दावा, बिजली पानी बिल विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता मामले, राजस्व मामले, ई चलान सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाएगा। 18 बेंच के तहत सुलहनीय वादों को निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम जन से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र एवं निःशुल्क समाधान हेतु लोक अदालत में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक विभाग के अलावा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। और श्रोताओं, भाई जान लेते हैं मौसम का हाल। श्रोताओं, आज सुबह सूर्योदय हुआ 5:14।

मिनट पर और सूर्यास्त होगा 6:27 पर। आज दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने वाला है और रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री। दिन में धूप निकलेगी, तेज हवा के साथ वर्षा और ओले गिरने की भी संभावना है। और श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक और खूबसूरत गीत फिल्म कर्ज से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की यह रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, तो आइए सुनें।

कर्ज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और श्रोताओं, अब आइए एक छोटा सा संदेश लेते हैं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई आज की सुर्खियों को। चारों अखबारों के साथ हम हाजिर हैं, जिनमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर शामिल है। आज दैनिक जागरण की सुर्खी है, विक्रमशिला सेतु का मरम्मत कार्य 15 जून तक शुरू कराने पर जोर। भागलपुर में संयुक्त बैठक में क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु के दुरुस्तीकरण कार्य 15 जून तक शुरू कराने पर मंथन किया गया। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को सेतु को री स्टोर करने संबंधी चिट्ठी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय हुआ कि पुल के दुरुस्तीकरण का कार्य पुल निर्माण निगम की निगरानी में होगा। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। NH के मुख्य अभियंता संजय भारती ने कहा कि मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद बेली ब्रिज का काम शुरू कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर क्षतिग्रस्त सेतु को रिस्टोर करने के संबंध में मूर्त को चिट्ठी लिखा जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद पुल निर्माण निगम की निगरानी में सेतु मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि IIT पटना की टीम सेतु का सेफ्टी ऑडिट कर रही है। दैनिक जागरण की ही दूसरी सुर्खी है, गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखा तो 2000 जुर्माना। अगर आपको आपकी गाड़ी पर भी जाति सूचक शब्द लिखे हैं या इससे जुड़ा स्टिकर लगा है तो उसे हटा ले। ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर चालकों से 2000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने इससे जुड़ा निर्देश जारी किया है। विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी वाहन मालिक 1 महीने के अंदर अपने वाहनों से जाति सूचक शब्द या स्टिकर हटा ले। विभाग के अनुसार 1 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर इसकी सख्ती से जांच की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 179 के तहत 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस दिशा में ध्यान दें और कानूनी परेशानी से बचें। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, UGC नेट जून 2026 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 तक पूरी करें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 मई की रात 11:50 तक खुली रहेगी। जो उम्मीदवार अब तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं या जिनका शुल्क भुगतान शेष है, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। एजेंसी के मुताबिक शुल्क भुगतान करने के बाद आवेदन में किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसीलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपना नाम, माता पिता का नाम, सामाजिक श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति, विषय का चयन, परीक्षा केंद्र के विकल्पों की बारीकी से जाँच कर लें। फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने और शुल्क भुगतान करने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण माना जाएगा। कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी, नोटिस या अनअपडेट के लिए अभ्यर्थी NTA की अधिकृत वेबसाइट UGCnet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। दैनिक भास्कर की ही सुर्खी है, नए डिग्री कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति जल्द। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय PPU के अंतर्गत 16 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेजों के संचालन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन कॉलेजों में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अगले 2 से 3 दिनों के भीतर प्रभारी प्राचार्यों के नामों की घोषणा कर देगा। स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन डॉक्टर राजीव रंजन ने यह जानकारी दी। उनके मुताबिक नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन प्राचार्यों की ज्वाइनिंग सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा घोषित 108 नए

की कड़ी में इन 16 संस्थानों को PPU से संबद्ध किया जाएगा। शुरुआत में प्रत्येक कॉलेज में 6 अनिवार्य विषयों की पढ़ाई होगी, जिससे प्रति विषय 50 सीटों के हिसाब से कुल 300 विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, किशनगंज में CISF का प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। केंद्र सरकार ने किशनगंज जिले के पोटिया अंचल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र RTC खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी X पर साझा की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह प्रशिक्षण केंद्र 110 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस प्रशिक्षण केंद्र में 1000 से अधिक CISF जवानों का प्रशिक्षण संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य और देश की सुरक्षा और संरचना को मजबूती मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं विकास के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया है। श्रोताओं, आइए जान लेते हैं अर्थ जगत और खेल जगत का हाल। सबसे पहले जानते हैं अर्थ जगत का हाल। मर्चेंट जहाजों के लिए सब्सिडी योजना 2031 तक बढ़ी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मर्चेंट जहाजों का भारत में पंजीकरण कराने वाले भारतीय कंपनियों को सब्सिडी देने वाली योजना को 5 साल के लिए बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030-31 तक कर दिया। इस योजना के विस्तार से भारत के समुद्री बेड़ों को मजबूत करने और वैश्विक पोत परिवहन में देश की उपस्थिति बढ़ाने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। और अब आइए जान लेते हैं खेल जगत का हाल। सुपर रैपिड और बिल्ट्स गुकेश ने सिंदारो को हराया। डी गुकेश ने विश्व चैंपियनशिप मुकाबले में तैयारियां पुख्ता करते हुए सुपर रैपिड और बिल्ट्स टूर्नामेंट में अपने चैलेंजर जावोखीर सिंदारो को 5वें दौर में हराया और अमेरिकी ग्रैंड मास्टर वेसुले सो को ड्रा पर रोका। उज्बेकिस्तान के सिंदारो को हराने के बाद गुकेश ने वेसुले सो को ड्रा पर रोका। अब उनके 6 अंक हो गए हैं, जबकि रैपिड वर्ग में 3 राउंड बाकी है। सिंदारो के खिलाफ जीत से उन्हें 2 अंक मिले, जबकि ड्रॉ से 1 अंक हासिल हुआ। 9 अंक लेकर अमेरिका के ही हैस नीमैन के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद व्लादिमीर फेडोसिव है, जो 1 अंक पीछे हैं। गुकेश फेबियानो कारुआना, जॉन क्रिस्टोफ डूडा और मैक्सिकन वाचियर लाग्रेव के 6 अंक हैं। ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट के इस टूर्नामेंट में गुकेश ने अपने फॉर्म के कारण और विश्व चैंपियनशिप मुकाबले के अभ्यास पर फोकस करने के लिए मुख्य टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। और श्रोताओं, इसी के साथ नमस्ते रोहतास का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल एक नए अंक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में अप्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यकता

0: आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंत

0: वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके

0: साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हो चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है देशभक्ति गीत।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

0: देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। संकलन और स्वर है रजनेश कुमार श्रीवास्तव का, प्रस्तुत करता है अमित कुमार।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रजनीश श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम सबसे पहले सुनेंगे सप्ताह भर की खेल गतिविधियों पर आधारित खबरें, उसके बाद सुनेंगे एक गाना और फिर हम आपको लिए चलेंगे बॉक्सिंग के कोच नरेंद्र कुमार यादव के पास। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह भर की खेल गतिविधियों की सुर्खियों से। सूर्यवंशी के लिए राजस्थान को बदलनी पड़ी अपनी पूरी रणनीति। द्विपक्षीय खेलों पर पाक के साथ रोक जारी ही रहेगी। अहमदाबाद में फाइनल, धर्मशाला में पहली बार प्लेऑफ। पीसीबी ने बकाया नहीं चुकाने वाले को नोटिस भेजे। अभिषेक रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। आर्सेनस पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से बस एक कदम दूर। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। द्विपक्षीय खेलों पर पाक के साथ रोक जारी ही रहेगी। खेल मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर पिछले साल पूरी तरह से लगाई गई रोक जारी रहेगी। हालांकि सीमा पार से आने वाले खिलाड़ियों को कई देशों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए यहां आने से नहीं रोका जाएगा। मंत्रालय ने खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल संचालन संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई, इससे कि भारत को एक पसंदीदा खेल स्थल के रूप में स्थापित किया जा सके। मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों, ओलंपिक संघ और खेल प्राधिकरण सहित अन्य को सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा, द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिताओं का संबंध है तो भारतीय टीमें पाक में होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही हम पाक टीमों को यहाँ खेलने की अनुमति देंगे। फुटबॉल, गवर्नर्स के नाम से मशहूर टीम ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से हराकर दूसरी बार फाइनल में टिकट कटाया। बुकायो साका ने दागा मैच का एकमात्र गोल। आर्सेनल्स की टीम पहली बार चैंपियंस लीग फुटबॉल की ट्रॉफी जीतने से सिर्फ एक जीत दूर रह गई है। गवर्नर्स के नाम से मशहूर इस टीम ने मंगलवार रात को खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे चरण में एटलेटिको मैड्रिड को रोमांचक मुकाबले में 1-0 और कुल 2-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। टीम 20 साल में पहली जबकि कुल दूसरी बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है। मैच का एकमात्र गोल बुकायो साका ने दागा। घर में एक गोल भी नहीं गवाया। खेल के 45वें मिनट में लिएंड्रो टोसाई के शॉट को कोजान ओब्लॉक ने बचा लिया, जिसके बाद साका ने रिबाउंड पर गोल दागकर आर्सेनल की जीत तय कर दी। सेमीफाइनल का पहला चरण 1-1 से बराबर रहा था। बढ़त हासिल करने के बाद आर्सेनल की रक्षा पंक्ति ने उसे बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाई। आर्सेनल ने तीनों नॉकआउट राउंड में अपने घरेलू

मैदान में एक भी गोल नहीं खाया है। टीम ने लीग चरण में अपने सभी 8 मैच जीतकर प्रतियोगिता में सबसे कम 4 गोल खाए थे। अभिषेक रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कायम है। भारतीय बल्लेबाज के 875 अंक हैं। ईशान किशन 871 ने भी अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। बुधवार को जारी ICC T20 खिलाड़ियों की ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे, इंग्लैंड के फिल सार्ट चौथे और श्रीलंका के पाथुम निसंका पांचवें स्थान पर हैं। भारत के तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव 7वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के टिम साइफर्ट 3 स्थान के नुकसान से शीर्ष 10 से बाहर हो गए हैं। अहमदाबाद में फाइनल, धर्मशाला में पहली बार प्लेऑफ। IPL का फाइनल अब बेंगलुरु की जगह लगातार दूसरे साल 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। प्लेऑफ के 3 मुकाबले 2 अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे, क्वालिफायर 1 धर्मशाला में और एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 न्यू चंडीगढ़ के मुल्लामपुर में खेले जाएंगे। BCCI ने बुधवार को यह ऐलान किया। परंपरा के अनुसार फाइनल की मेजबानी बेंगलुरु को मिलनी थी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स मौजूदा चैंपियन है। पिछले साल के अलावा अहमदाबाद ने 2022 और 2023 में IPL फाइनल की मेजबानी की थी। BCCI ने कहा कि IPL फाइनल की मेजबानी के लिए मूल रूप से बेंगलुरु को चुना गया था, पर स्थानीय संघ और अधिकारियों की कुछ ऐसी मांगों कारण जो बोर्ड के स्थापित दिशा निर्देशों को और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थी, आयोजन स्थल को स्थानांतरित कर दिया गया है। बोर्ड ने हालांकि कर्नाटक की राजधानी में फाइनल आयोजित के लिए की जा रही मांग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि संचालन और लॉजिस्टिक से जुड़े मामले के कारण प्लेऑफ चरण के मैच 3 स्थानों पर खेले जाएंगे। धर्मशाला में पहली बार प्लेऑफ का कोई मैच होगा। क्वालिफायर 1 में जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी, हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में खेलने का मौका मिलेगा। BCCI के सूत्रों ने बताया कि अहमदाबाद को उसकी अधिक दर्शक क्षमता के कारण प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों, ये थी खेल गतिविधियों पर आधारित हमारी साप्ताहिक खबरें। आइए सुनते हैं अब एक गाना।

0: तो दोस्तों आइए खेल खिलाड़ी के अगली कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नरेंद्र कुमार यादव जी के पास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर विद्यालय चलाया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, तो वो होती है फिजिकल टीचर की, क्योंकि वो सबसे पहला पाठ आपको पढ़ाता है अनुशासन का। चाहे विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या खेल के कार्यक्रम हो या किसी भी तरह के कार्यक्रम हो, उसमें सर्वप्रमुख भूमिका वही निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि यही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में वो हमारी बहुत सहायता करते हैं। आप जितने भी प्लेयर आज तक देखे होंगे वो कहीं ना कहीं अपने फिजिकल टीचर से जुड़े हुए थे, और यही फिजिकल टीचर उसके कोच भी हो जाते हैं। तो आइए ज़्यादा समय हम न लें, आपको हम सीधे लिए चलते हैं नरेंद्र कुमार यादव जी के पास। नरेंद्र जी, सबसे पहले आकाशवाणी सासाराम आपका हार्दिक स्वागत करता है।
1: धन्यवाद सर।
0: नरेंद्र जी, आप अभी किस विद्यालय में कार्यरत हैं उसके बारे में हमको बताएं, और वहाँ आपकी क्या भूमिका होती है?
1: फिलहाल मैं मध्य विद्यालय करसेरुआ, जो कि दरीगांव सासाराम में है, वहाँ मैं स्वास्थ्य अनुदेशक के पोस्ट पे हूँ, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। हम लोग PTI हैं वहाँ पे, और 2022 में हमारी ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे।
0: सरकार का क्या उद्देश्य रहा होगा कि विद्यालय में एक फिजिकल टीचर को रखा जाए?
1: जी, नई शिक्षा नीति को भी लेके और पहले से भी जो भी हमारे स्कूल के नियम और रूल्स बने हुए हैं उसमें सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा को अहमियत दिया गया है। फ्यूचर में जो भारत सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, इसमें तो काफ़ी नीचे से स्तर से ही कि बच्चे जूनियर लेवल से, प्राथमिक लेवल से ही स्पोर्ट्स के प्रति रुझान रखना शुरू करें, उनको मोटिवेट करें खेल और खेल के माध्यम से पढ़ाई और उनके एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए वैसा कार्यक्रम कराएं जिसमें बच्चों का रुचि बढ़े और खेल के प्रति जागरूक हो।
0: खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दुनिया के सारे महापुरुषों ने इस बात को कहा है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बच्चे को अगर बचपन से जो प्राइमरी एजुकेशन आपने कहा, अगर हम वहां से उसको खेल के प्रति जागरूक करें, और कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वो 10th क्लास के बाद शुरू किए और फिर आगे तक चले गए, वो अलग की बात है, लेकिन ये कहां तक फायदेमंद होगा कि उसको प्राइमरी एजुकेशन में ही इसको शामिल किया जाए?
1: जी बिल्कुल सही बात है। आज हम अगर देखें तो दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जैसे जापान सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स में मेडल लाता है। कारण क्या है? हम लोग के यहाँ बच्चे 9, 10, 11, 12 में जाते हैं तो स्पोर्ट्स के प्रति अब उनका रुझान आना शुरू होता है और वो सोचते हैं कि चलो पहला कदम हम रखते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। लेकिन जापान ऐसा देश है जो बच्चों को प्राइमरी लेवल से, मतलब प्राथमिक लेवल से ही बच्चों को स्पोर्ट्स में एक उनका सब्जेक्ट हो जाता है, कि एक ऐसा पीरियड बना जाता है जहाँ से वो स्पोर्ट्स को खेलना अनिवार्य कर दिया जाता है। और वो बच्चे इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि उस लेवल में आते आते, 9, 10 आते आते बहुत ही अच्छे जानकार हो जाते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। जो उनका जो मेन गेम होता है, जो इंडिविजुअल गेम या फिर हमारा ग्रुपिंग गेम जो होता है, उसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं और गेम को समझना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, और वो क्या करते हैं उस लेवल में आते आते मेडल देना शुरू कर देते हैं। और जो कि हमारे यहाँ बच्चे जब 9, 10 में जाते हैं, जो कि उनका लास्ट बेच बच जाता है।

0: सब जूनियर खेलने का, तो वो पहला कदम रखते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। अभी आधा समझ ही नहीं पाते तब तक उनका कदम दूसरा चला जाता है जूनियर के रूप में। अब जूनियर के बाद यूथ और सीनियर, तब तक पता चलता है कि वो अभी परफॉर्म देने वाले थे तब तक उनका एज एक्सपायर कर जाता है, तो वो उस लेवल में नहीं पहुँच पाते जिन जैसे कि अब अभी जापान वगैरह के बच्चे, चाइना के बच्चे इस खेल के माध्यम से बचपन से खेलते खेलते वो उस लेवल में आ जाते हैं। जूनियर, सब जूनियर और सीनियर में तो काफ़ी बढ़िया, इसलिए सबसे ज़्यादा मेडल वो ला पाते हैं। तो हमारा भी भारत सरकार का अभी जो नया नीति बना है इसको लेके ही बना है कि हम क्यों ना प्राथमिक लेवल से ऐसा कोई नीति बनाए जिससे हमारे बच्चे शुरू से ही स्पोर्ट्स में ध्यान दें और उनको एक ऐसा क्लास दिया जाए जहां से सीखना शुरू कर दें। कम से कम अगर हम मान लीजिए प्राइमरी के बच्चे हैं तो कोई गेम तो नहीं खेलेंगे, लेकिन गेम के थ्रू ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो बिना इक्विपमेंट के या फिर इक्विपमेंट के द्वारा उनको बताया जाए, समझाया जाए, ताकि उनका फिजिकल एक्टिविटी हो सके। अगर बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी अगर होना शुरू हो गया तो उनके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर जब हमारा स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेंगे। बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे खुद ब खुद उनकी पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी, भूख लगना शुरू हो जाएगा, डाइट अच्छा लेना शुरू कर देंगे, और जब हम उनको एक्सरसाइज और कोई भी गेम बताएंगे तो उसमें उनका डेवलपमेंट होना एकदम सुनिश्चित है।
1: एक अंडर 14, अंडर 19 और अंडर 16, ये तीन तरह की चीज़ें, ये है क्या, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी, ये जो हमने बताया अंडर 14 जो 14 साल से कम उम्र का, ये पहला कैटेगरी होता है जो हमारे स्कूल का जो फेडरेशन का ये हमारा वो बनाया हुआ है रूल्स, जैसे अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, तो ऐसे अंडर 14 में वो बच्चे आ जाते हैं जो 6 से लेके 8 तक के बच्चे होते हैं, 9 तक के बच्चे होते हैं जो इस ग्रुप में आते हैं, मतलब 10 से 12 साल के बच्चे से लेकर के 14 साल के बच्चे, मतलब ये पहला कैटेगरी होता है जो खेलने का उनका। हर गेम में जैसे फुटबॉल भी खेलेंगे तो अंडर 14 में आ जाएंगे, ग्रुप गेम में कोई भी आएंगे, या फिर इंडिविजुअल गेम में एथलेटिक्स हो या फिर और भी बॉक्सिंग, ताइक्वांडो हो या फिर बैडमिंटन हो, तो उसमें भी 14 के बच्चे खेलते हैं। कुछ ऐसे गेम होते हैं जिनमें 14 अलाउड नहीं है तो वो 17 से स्टार्ट होते हैं, जैसे बास्केटबॉल वगैरह उसमें 17 से 19 से शुरू हो जाते हैं।
1: लेकिन ट्रेनिंग तो उनको पहले से देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही लेके अब इस नियम को ही लेके हम लोग क्या कर रहे हैं कि अंडर 12, सरकार का तो नीति 12 साल से है लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अंडर 12 जो 12 के अंदर के बच्चे हैं उनको भी तैयार करते हैं, खेलेंगे भले ही नहीं लेकिन हम लोग उनको तैयार करते हैं, गेम को समझ पाए, अच्छे से परफॉर्म करने लगे। जैसे ही अंडर 14 में जाते हैं, 12 क्रॉस कर जाते हैं, तो वो खेलने लायक हो जाते हैं और गेम को अच्छे से समझ भी पाते हैं।
1: नवीन जी, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूं कि आप स्कूल की ड्यूटी पूरा किए और अभी मैं आपके साथ यहां खेल भवन में, फजलगंज खेल भवन में बातें कर रहा हूं, तो आप यहां किस लिए आते हैं और क्यों इतना ज़्यादा समय देते हैं?
0: जी देखिए, हम लोग रेगुलर स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं और स्कूल के अलावा उसके बाद हमारा 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक न्यू स्टेडियम फजलगंज में खेल भवन में ताइक्वांडो हॉल है हमारा, जिसमें हम लोग मिक्स मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देते हैं, बॉक्सिंग, वुशु, ताइक्वांडो, योगा, कुश्ती, ये सब हम सारे बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, जो कि बिहार सरकार की तरफ से हमें एक हॉल मिला हुआ है, हमारे जिला प्रशासन की तरफ से हमारा ये हॉल मिला है जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं सीखते हैं और अपने रोहतास जिला के लिए काफ़ी मेडल भी दे रहे हैं।
1: बेसिकली आप किस चीज़ के यहाँ कोच हैं?
0: हम यहाँ बॉक्सिंग के हैं, हमने मिक्स मार्शल खेला भी था शुरू से, इसलिए बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और ये सब कराते भी हैं और सारे बच्चे हमारे मिक्स में खेलते भी हैं, कुछ बच्चे इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बच्चे मिक्स गेम को भी करते हैं।
1: इस कार्यक्रम को बहुत सारे लोग सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, तो यह बताइए कि मार्शल आर्ट के अंतर्गत जो बॉक्सिंग आता है उसमें उनका क्या भविष्य और कैसे खेलते हैं उसको, कैसे उसकी शुरुआत होती है?
0: बॉक्सिंग बहुत पुराना गेम है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये 668 BC में स्टार्ट हुआ था बॉक्सिंग, अब से चलते आ रहा है, ओलंपिक में भी शामिल है, एशियन में भी शामिल है, इसको हम मुक्केबाजी के नाम से जानते हैं। और उसके अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि ये 668 BC से स्टार्ट है और उसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो बॉक्सिंग है इसमें जोश, जुनून, ताकत काफ़ी ज़रूरत पड़ता है और ये मुक्के की पावर से हम अपने प्रतिद्वंदी को मार गिराते हैं तो ही बॉक्सिंग में आगे पहुंच पाते हैं, मेडल ला पाते हैं।
1: इसमें किस किस तरह से पॉइंट मिलते हैं?
0: इसमें पेट से लेके चेस्ट और फेस पे, मेन टारगेट फेस पे होता है, चेहरे पे होता है। वो जो पंच हमारा होता है बॉक्सिंग में, एमेचर में 8 पंच होते हैं, 1-2 से लेके 8 तक। पहला होता है जैब, दूसरा होता है क्रॉस, लेफ्ट हुक, राइट हुक, उसके बाद लेफ्ट बॉडी शॉट, राइट बॉडी शॉट, फिर उसके बाद 7 में आता है अपर हुक, लेफ्ट अपर हुक, और 8 में आता है राइट अपर हुक। ये 8 तरह के पंचेज हैं जो बॉक्सिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं।

0: इसी के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं
1: जी बिल्कुल, पंच पे इस पे क्या है कि नॉकआउट सिस्टम भी होता है और पॉइंट वाले सिस्टम भी होते हैं। अगर बच्चा एक पंच अगर मारता है तो वो भी बिना उसके ब्लॉक पे लगे डायरेक्ट फेस पे लगता है, और प्रतिद्वंदी उसका अगर गिर जाता है तो उसको 10 तक काउंट करते हैं। अदर 10 तक के अंदर में अगर बोल देता है कि खेलेंगे तो फिर से गेम को स्टार्ट करते हैं, या अन्यथा उसको फिर वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और अगला विनर हो जाता है और जो गिरा पड़ा है वो रनर हो जाता है।
0: लोगों का मानना है कि ये बहुत खतरनाक गेम है, इसमें इसलिए बहुत कम लोग आ पाते हैं। क्या कोई सुरक्षा भी देते हैं? क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि किसी ने पंच मारा, चेहरे पे सारे दांत बाहर आ गए।
1: नहीं देखिए, अब तो सारे गेम्स को हम चाहते हैं कि सेफ्टी से खेलाएं। हमारा सरकार का भी ये कहना है कि आप अप्लीकेशन तभी हम देंगे ओलंपिक्स में, एशियंस में, तब कि आप जब आप सेफ्टी गेम खेलेंगे। पहले होते थे, लेकिन अब क्या है कि सारे गेम को सेफ्टी कर दिया गया है। बॉक्सिंग में भी क्या है, जूनियर से सब जूनियर से लेकर यूथ तक में उनको हेड गार्ड दिया जाता है, ताकि हेड गार्ड में उनके ईयर जो है, कान जो है, सेफ्टी से बचे रहे, उनके जो मेंडुला है, माइंड पे ऐसा कोई ज़ोरदार चोट ना लगे जिससे बच्चों को ज़्यादा क्षति पहुँचे। इसलिए उनको एक गार्ड दिया जाता है, उनको टीथ गार्ड दिया जाता है ताकि उनके दांत ना टूट पाए, माउथ गार्ड होते हैं। उसके बाद उनको रिस्ट बैंड दिया जाता है जैसे कलाई ना टूट पाए, फिंगर ना टूट पाए। उसके बाद वो ग्लव्स पहनते हैं, तो इतने सारे गार्ड होते हैं। तो ये क्या है, हमारे सुरक्षा के लिए है, ताकि हम अगर मार भी रहे हैं या फिर बचाव भी कर रहे हैं तो ये हमारे बॉडी पे उतना असर ना पड़े।
0: इसमें होता है पावर को जेनरेट करना, है ना, अपने पूरे शरीर के ताकत को हम अपने मुट्ठी में ले जाते हैं। ये किस तरीके की ट्रेनिंग आप देते हैं और कैसे समझाते हैं कि ये पावर यहाँ जेनरेट होगा?
1: जी बिल्कुल, पंच तो देखिए हर कोई मार लेता है, लेकिन जब एक बॉक्सर का पंच चलता है तो कहा गया कि वन पंच इज अ स्पोर्ट डेथ। इतना पावरफुल होना चाहिए कि अगले बंदे को लगे तो वो बर्दाश्त ना कर पाए, तभी वो पंच कहलाएगा। अदरवाइज नॉर्मली पंच तो सब लोग मारते हैं। तो पंच को पावर में लाने के लिए रात दिन मेहनत करके उतना पावर जनरेट किया जाता है कि इतना स्पीड जनरेट किया जाता है कि उसमें इतना हिम्मत और पावर आ ही जाता है।
0: इसमें जो आप ट्रेनिंग देते हैं, किस किस तरह के इक्विपमेंट सामान का सहारा लेते हैं आप?
1: हमारे यहाँ बॉक्सिंग के पंचिंग बैगेज हैं, पंचिंग पैड हैं, पंचिंग ग्लव्स हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, हेड गार्ड हैं, टीथ गार्ड, माउथ गार्ड, रिस्ट बैंड वगैरह, ये सब इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे हमारे पास हमारे अकेडमी में अवेलेबल रहता है और हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं।
0: इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी सुने जाते हैं कि किसी के एक मिनट में इतना पंच मार लेता है, ये किस तरह का रिकॉर्ड होता है?
1: जी बिल्कुल, ये अपने स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक मिनट में कितना पंचेज मार सकते हैं, हमारे पंच का स्पीड क्या होता है, हमारे पंच का पावर क्या होता है। ये हम अपने द्वारा कभी इसको आजमा के हम लोग देखते हैं कि कितने पावर से हमने पंच को मारा। हमारे पंचिंग बैग पे या फिर हमारा एक मशीन आता है जिसमें हम जितना पावर मारेंगे वो बता देता है कि कितने पावर से पंच चला है, स्पीड को माप लेता है कि हमारा पंच का जो स्पीड था वो क्या था।
0: यहाँ आने के लिए आप उसको शिक्षा दे सकें, उसे सिखा सकें, इसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा कि वो आप तक पहुँचे?
1: बच्चे देखिए, हम लोग तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, हम गवर्नमेंट के जगह पे ये क्लासेस देते हैं, तो बच्चे पता करके आ ही जाते हैं कि स्टेडियम में कौन कौन से गेम होते हैं, उनको जिस गेम से रुचि होता है। अगर जो बोल के आते हैं कि सर हमें अगर इस मार्शल आर्ट में ही रुचि है, तभी हम उन लोगों को पहले पूछा जाता है उनसे कि बच्चे आपका गेम में ज़्यादा रुचि है। अगर वो बोलते हैं कि हमारा अगर रुचि इस गेम में है, मार्शल आर्ट में है, बॉक्सिंग में है, ताइक्वांडो में है, तभी हम उन लोगों को पहले उनका हम लोग क्या करते हैं, बैटरी टेस्ट लेते हैं, फिजिकल टेस्ट लेते हैं। अगर वो कैपेबल हैं, उस लायक हैं, तब हम लोग उसको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं और काफ़ी आगे तक निकल जाते हैं बच्चे।
0: जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं मार्शल आर्ट में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे उसमें अपना फ्यूचर बना सके और क्या क्या डाइट ले?
1: बिल्कुल, पहले कोई भी गेम खेले बच्चे, डाइट हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि मेन डाइट ही होता है। अगर हम प्रैक्टिस बहुत सारा कर रहे हैं लेकिन डाइट हमारा सही नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। कारण क्या है कि पहले ऑर्गेनिक खेती होती थी और हर चीज़ शुद्ध मिलता था, यहाँ तक कि दूध में भी अभी यूरिया का इस्तेमाल होता है या फिर और भी सारे फसलों में हम लोग यूरिया डाल रहे होते हैं, वही चारा गाय भैंस खाती है तो वो दूध में भी आ ही जाता है, इवन हमारे सारे सीड्स अनाज में भी वही चीज़ है। तो अगर हम चाहें कि अगर उस भोजन को करके अगर गेम को कर पाए तो मुश्किल, उसके लिए हम बोल सकते हैं थोड़ा मुश्किल है। अगर हम पर्सनल अगर ज़्यादा कॉस्ट ना खर्च करके घर का ही अगर इस चीज़ को यूज़ करें तो हम घर का भोजन को भी थोड़े अच्छे से हम ले सकते हैं। थोड़ा चेंजिंग करना होगा हमारे डाइट को, बाकी सब ठीक है।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार यादव जी, कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय हमें दिया।
1: ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद सर।
0: दोस्तों, तो इसी के साथ संपन्न होता है हमारे यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

आपको हमारे यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115, संकलन एवं सर रजनीश श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, संकलन और स्वर था रजनीश कुमार श्रीवास्तव का और प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी।

अहिले चैत्र, ये गीत आप सुन रहे थे मुन्ना सिंह की आवाज़ में। गणेश दत्त किरण का लिखा गीत था, यूसुफ खान का संगीत था। अब आइए सुनते हैं अगला गीत, करी हम कौन बहाना एल्बम से शिवानंद ठाकुर की आवाज़ में ये अगला गीत। गीत के बोल पारंपरिक हैं और संगीत शिवानंद ठाकुर का है।

सत्येंद्र पांडे और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत अशोक शिवपुरी का लिखा हुआ सत्येंद्र पांडे के संगीत निर्देशन में। और इसी के साथ श्रोताओं लोक माद्री कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का लो रसधार।

आलोक रंजन और ज्योति तिवारी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे भाग अखिया ये गीत। तब आइए सुनते हैं आलोक रंजन की आवाज़ में नज़र के सामने सनम ये गीत।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

पल्लवी जोशी की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, बलम छोड़ी न कलैया। और श्रोताओं, इसी के साथ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 11 बज चुके हैं और अब आइए आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए।

0: गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
3: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना, शुभा मुद्गल की आवाज़ से इन्हीं का लिखा हुआ गीत संगीत जवाहर वत्तल का।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम

0: प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: ये है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।

0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

0: पंकज उधास की आवाज़ आपने सुनी। शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम लाइफ स्टोरी।
1: रंग तरंग

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज़ मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया।

0: वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, 8 से 12 मई तक हम मना रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सड़क पर चलने के जो नियम हैं उनका पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बातें हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। पहला जो गीत है ये कूली फिल्म का गाना शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

बत्ती देखी न मैंने झंडी देखी, एक्सीडेंट हो गया रपा रपा, एक्सीडेंट हो गया।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा

0: हिस्सा लीजिए विविध भारती के सदस्यों के साथ, वॉक कीजिए आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
0: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है SD बर्मन का।
1: बाजू।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल संगीत है राजेश रोशन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: स्वदेश फिल्म का गाना उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज़ में, नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार
0: है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आकाशवाणी अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: यह है जीत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कैसे तो देखो,
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो।

दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है, उससे पता चलता है कि कितनी शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उन

की नज़रों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी देकर के पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं, सुरीला सफ़र में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर कनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है। बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोली होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा। विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा। फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफ़र जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ तक आपकी ये बातें ठीक है लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने, कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है, तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहाँ पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है, तो आप किसी शादी समारोह में गए, कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

0: कब से बुला रही है बुढ़ी के चक्कर में तू कैकू परेला।
1: वाह वसल वाह, भाई क्या शेर मारा है।
2: वाह वाह वा, वा, वा।

मेरा दोस्त hey! दोस्त को सलाम करो hey! रात को खाओ पियो hey! दिन को आराम करो hey! बम्बई से

तो दोस्तों की बातें हो गई, एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना ज़रूरी है, विशेषकर विदाई के समय। जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीढ़ी देखते हैं तो यह सब रस्में देखकर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है, हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एन्जॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत ख़राब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में मज़ा आता है, बूफे में नहीं आता है, वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है। ये बदलाव काफ़ी अच्छा और

सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह।

ना संगीत रवि का, जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ़ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियाँ खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ की सीख यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी, आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।

कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए मायके के दरवाजे

सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए, मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ़ का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए। ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नज़रों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफ़र, ये सुरीला सफ़र आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज सुरीला सफ़र कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफ़ी साहब की दर्द भरी आवाज़ ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आँखें

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:59 और 50 सेकंड हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों के कार्यभार संभालने का सिलसिला शुरू हो गया है। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि यह विभाग काफी चुनौतियों भरा है। श्री जायसवाल ने कहा कि विभाग के लंबित सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने के लिए ठोस कार्यनीति बनाई जाएगी। इधर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शराब की तस्करी और स्थानीय स्तर पर शराब के निर्माण को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी कार्यभार संभाल लिया है। श्री कुमार ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वे काम करेंगे। इधर पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता समेत कई अन्य मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात के दौरान विस्तारित मंत्रिमंडल को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुदृढ़ करना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय और जन केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध हो सके। मंत्रालय ने कहा है कि पूरी तरह से प्रशिक्षित और आत्मविश्वास से भरे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने, उच्च स्तरीय अस्पताल इकाइयों पर बोझ कम करने और स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का जत्था पटना कॉलेज से पीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, तभी जेपी कोलंबर के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी छात्रों के घायल होने की खबर है। इधर पटना स्थित IGIMS में नर्सिंग छात्राओं का आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्राओं का आरोप है

0: कि उन्हें जानबूझकर परीक्षा में फेल किया गया है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत के लिए सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में विशेष पीठों का गठन किया गया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता रथों को रवाना किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे अधिक 54.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पटना, बेगूसराय, भोजपुर, गया, नवादा, मधुबनी और सीवान समेत 25 जिलों में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश की संभावना है। इधर मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, सिवान और रोहतास जिले में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। बक्सर और सिवान जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत में काबीना की तौसी और महकमों की तकसीम के बाद विजरा के ओहदा संभालने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लाहाते एराजी और रेवनू के वजीर दिलीप जायसवाल ने आज अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। उन्होंने कहा कि ये महकमा काफ़ी चैलेंजों से भरा हुआ है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि महकमा के जेर इल्तवा अवामी कामों को मुकम्मल करने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाएगी। दरी असना, नशाबंदी, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन के वजीर मदन सहनी ने भी अपना चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शराब की स्मगलिंग और मुकामी सतह पर शराब की तैयारी को रोकना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। वजीर सेहत निशांत कुमार ने भी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। जनाब कुमार ने कहा कि वो आम लोगों की बेहतर सेहत की सहूलत तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। इधर वजीर सियाहत केदार प्रसाद गुप्ता, वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी, वजीर पंचायती राज दीपक प्रकाश और वजीर समाजी बहबूद श्वेता गुप्ता समेत कई दीगर विजरा ने भी अपने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज साबिक वजीर आला और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार से उनकी पटना वाक़े रहायशगाह पर मुलाकात की। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान बुनियादी तौर पर तौसीई काबीना के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने प्राइमरी हेल्थ टीमों के लिए एक मरबूत तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद पहली सफ के हेल्थ केयर वर्कर्स को मजबूत बनाना है ताकि समाज के आखिरी फर्द तक जामे और अवामी मरकज़ निगाह वाली सेहत की देखभाल की सहूलत दस्तयाब हो सके। वजारत ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता और पुर एतमाद प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स तिब्बी निज़ाम के मेयार को बेहतर बनाने, आला सतह के अस्पतालों पर बोझ कम करने और निज़ाम सेहत में लोगों के एतमाद को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं। असातज़ा तकर्री के चौथे मरहले के इम्तहान का इश्तहार जल्द अज जल्द जारी करने के मुतालबे को लेकर उम्मीदवारों ने आज पटना में एहतजाज किया। उम्मीदवारों का काफिला पटना कॉलेज से शुरू होकर बीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, तभी जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने मुजाहरीन को रोकने की कोशिश की। एहतजाज करने वाले तलबा बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई मुजाहरीन के जख्मी होने की खबर है। इधर पटना में वाकई आईजी आईएमएस में नर्सिंग की तालबात का एहतजाज आज दूसरे दिन भी जारी है। एहतजाज करने वाली तालबात का इल्जाम है कि उन्हें जानबूझकर इम्तहान में फेल किया गया है। पटना हाई कोर्ट समेत रियासत की

0: तमाम अदालतों में कल कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा। लोक अदालत में बाहमी समझौते की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के सिविल और कुछ क्रिमिनल मुकदमात का तस्फिया किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट की हिदायत पर ट्रैफिक चालान से मुतालिक मामलात को भी लोक अदालतों के जरिए हल किया जाएगा। लोक अदालत के लिए तमाम ज़िलाई और सब डिविज़नल अदालतों में खसूसी बेंचेस तश्कील दी गई हैं। इधर हमारे नुमाइंदों ने बताया कि लोक अदालत के इनाकाद की इत्तला देने और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए बेदारी रथ रवाना किए गए हैं। मगरबी हवा के असर से रियासत में बारिश के हालात बने हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे ज़्यादा 54.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि आज पटना, बेगूसराय, भोजपुर, गया, नवादा, मधुबनी और सिवान समेत 25 अजला में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इधर महकमे मौसमियात ने बक्सर, भोजपुर, सीवान और रोहतास अजला में अगले कुछ घंटों में गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बक्सर और सीवान अजला के कुछ मकामात पर झालाबारी की वार्निंग भी जारी की गई है। महकमा ने लोगों से मोहतात रहने और ख़राब मौसम के दौरान महफूज मकामात पर रहने की अपील की है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेडमैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग SSC विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 अथवा 3 वर्ष का अनुभव रखता

0: होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि है 14 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला

0: सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
5: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल

0: गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजे शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर, और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये
1: वहीं से कर।
0: अच्छा, तो ये जो

0: सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में,
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी,
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से, क्या बात है। तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय
1: जी,
0: में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका, कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक।
1: दसवीं
0: तो
1: जी,
0: ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही हैं।
0: अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें हमें भी कई वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज़ आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही
1: क्योंकि
0: कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल
1: सही
0: सही।
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह, ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस हाँ, आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है। तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी सखी बात कर रही है, क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन?
1: हाँ।
0: कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम जा के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी
1: हाँ,
0: के, तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है। तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत
1: और
0: सारे जी।
1: और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में।
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाली जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: पालदाना का इंदौर से हसीना भी, तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर 1 है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर 1 है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जिनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल हैं, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना सही है।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, आपकी तरफ कैसा मौसम है?
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुन रहा
0: है। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले गुलाबी सिंधरिया लग मुझे नजरिया है, लता जिंदा है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: नमस्ते। क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से
1: जी।
0: ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो।
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सखी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो वो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी,
1: जानकारियाँ भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत, और
0: जी,
1: आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है। विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत,
0: जी
1: उसने
0: हाँ
1: किया। और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटी से मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र में लगभग 43 साल होगी।
0: जी,
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते। हेलो
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: सहेली जिया, और सखी सहेली सुनना थी यही। मैं
0: जी
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी। मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है, पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को
1: जी
0: याद करते हुए सुनते हैं ये
1: जी
0: आपकी पसंद का गीत।
2: पान

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई से।
0: झनकार, झनकार मुंबई से। क्या बात
1: जी
0: है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं
1: बस
0: झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं
0: जी
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ,
0: क्या बात
1: तो मुझे
0: है,
1: अच्छा लगता है।
0: तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है
1: हाँ,
0: कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं। तो अभी भी
0: जी
1: उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है।
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ,
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: टाइप से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं
0: सिखाने?
1: नहीं शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है। ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल।
1: गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है,
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम कुछ
0: आपने
1: भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं
0: जी
1: जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत् तत् है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की, कि
0: क्या बात
1: वो
0: है।
1: जैसे बोलती थी थई जोर से मारो, तत् लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: थोड़ी तो
0: कहा।
1: अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: उस
0: सही।
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है
1: हाँ
0: ना
1: हाँ इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है, जिस
0: जी।
1: जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ,
0: जी
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत् तत् थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, तत् तत् थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, ता थई, तत् तत् थई, तत् तत् थई, तत् तत् थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है,
0: क्या
1: और
0: बात है
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो
1: जी
0: मुंह
1: जी
0: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
1: हाँ
0: झनकार
1: सर,
0: जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिचल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी लगी
0: जी
1: थी फिल्म
0: जी वो
1: शबाना
0: बहुत
1: आजमी।
0: सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में इस
1: अच्छा सा और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है कोई?
1: ये निंदाई खुदाई है, वे तो को चारा वारा डालना है, खेत
0: जी,
1: में पानी देना है। हाँ
0: तो वहाँ पे पशु भी हैं,
1: है ना, एकदम
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी
1: हाँ है ना,
0: हैं।
1: है भैंस भैंस है, भैंस
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में?
1: है भैंस।
0: भैंस हैं? कितनी भैंसे हैं वहाँ?
1: हाँ दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: 2 गाय 2 भैंसे? तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार
1: मैडम,
0: अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना। गर्मी
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा
1: में तो
0: देने
1: वैसे
0: का।
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ
0: रह सके, बैठ
1: गाँव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी वानी टाइम टाइम से पिलाते हैं।
0: जी तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: फिर वो
0: होता
1: वहाँ पे
0: होगा।
1: घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के चला जाते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है।
0: तो कितनी अच्छी है तो

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी, इंदौर से। मनीषा जी,
1: मध्य प्रदेश
0: जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं?
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलती थी कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का। तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेम लता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका हैं ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
2: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूँ, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूँ, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज़्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नज़रिए से सोचती हूँ तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगीं। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज़्यादा कागज़ की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज़्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊँगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज़ बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊँगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज़ भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को

पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज़्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो 1000 टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूँ? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहाँ से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको ज़रूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊँ? आखिर उस घर में अपनी माँ की ज़रूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ ज़रूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

यही लौटकर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया।

0: किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।
1: तुमने

जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था, एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफ़ेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नज़दीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहाँ कंबल और सफ़ेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नज़दीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नज़दीक पहुँचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज़्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज़ थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल। माँ की गोद नहीं, कागज़ के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार ज़रूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो, जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो, जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज़ का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज़ कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आँखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा

सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियाँ, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या माँ बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? माँ बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं।

बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज़ ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्चे मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि माँ बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताज़ी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश के बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ। मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने

धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊँ। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहाँ से रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। वो औरत जिसने माँ बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहाँ जा रही है वही उसकी असली माँ है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीरो निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सुनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी।

फिर से कस कर लिपट जाती, जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूँ। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाज़ा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी, और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल

दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलट कर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगर्गी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए, स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी

0: राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.4 मेगाहर्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

अब से थोड़ी ही देर बाद 5:10 पर वंदन कार्यक्रम में सुनिएगा कुछ भक्ति रचनाएं। शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे महिला बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा अपने लिए बोलना सीखिए, और आप सुनेंगे पुनीता अरोरा जी, हाँ लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में कुछ जानकारी, और गीत संगीत से भी हम इस कार्यक्रम में माहौल में चार चांद लगाए।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण हम लेकर आएंगे शाम 6 बजे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रेड क्रॉस का महत्व, इस विषय पर चर्चा, साथ ही आप सुनेंगे एक बरसाती लोकगीत कारी रे बदरिया, कलाकार होंगे भरत सिंह। और भेंटवार्ता के अंतर्गत गांव घर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बिना ऑपरेशन होम्योपैथी से उपचार, इस विषय पर डॉक्टर ए एन तिवारी से डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी की बातचीत। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत का प्रसारण किया जाएगा आज शाम 6:30 से शाम 7:15 तक। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास हम लेकर आएंगे शाम 7:15 पर। सात बजकर 25 से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए, और 7:50 से रात 8:45 तक आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। आठ बजकर 45 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।

लोकधारा कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा। भोजपुरी लोकगीत का समय होगा रात 9 बजे। नौ बजकर 15 मिनट पर बंदगी कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे आपको कुछ कव्वाली। 9:30 मिनट पर आकाशवाणी विविध भारती से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। हमारे सासाराम केंद्र से रसरंग कार्यक्रम में सुनिएगा हिंदी एल्बम सॉन्ग रात 10 बजे। चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत रात 10:30 मिनट पर। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान हम लेकर हाजिर होंगे 10:55 मिनट पर। रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 मिनट पर अंग्रेजी समाचार। हमारी आज की यह सभा संपन्न होगी रात 11:10 मिनट पर।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप जानकारी ले रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे चंद भक्ति रचनाएं। सुनवाते हैं आपको सबसे पहले शिवांगी गर्ग की आवाज़ में विवेक शर्मा का लिखा हुआ एक गीत, संगीत सुमित ढिक्की का है और एल्बम है मैया मुझ पर मेहर कर दे।

अभी आप सुन रहे थे तृप्ति शाकिया के स्वर में रवि चोपड़ा का लिखा हुआ एक गीत, संगीत अनूप जलोटा का था। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर, और आप सुन रहे हैं वंदन कार्यक्रम में चंद भक्ति रचनाएं। अब लीजिए सुनिए ये संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: संदेश के बाद आप सभी का स्वागत है और अब वंदन कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुरेश वाजेकर की आवाज में अभिलाष का लिखा हुआ एक भक्ति रचना, संगीत शैलेश दानी का है।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर के स्वर में अभिलाष का लिखा हुआ ये भक्ति रचना। संगीत था शैलेश दानी का। और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए किरण मिश्रा का लिखा हुआ एक भक्ति गीत। संगीत एल नितेश कुमार का है और एल्बम है दुर्गा हमारी सेरा वाली। तो इस एल्बम से लीजिए सुनिए तृप्ति शाक्या की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब लीजिए सुनिए महिला बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण।

नमस्कार सखियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। सखियों, जीवन एक नदी की तरह है जो कभी शांत और सुखमय होती है तो कभी उसमें दुख और संघर्ष की लहरें उठती हैं। जैसे नदी अपने गंतव्य की ओर बिना रुके बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी अपनी गति से चलता रहता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। सुख और दुख दोनों जीवन का अभिन्न अंग है। ये दोनों हमें जीवन की गहराइयों का एहसास कराते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को बैलेंस रखना है और सफल बनाना है। फिर चाहे वो बात अपने लिए ही क्यों ना हो, किसी ने सच ही कहा है और क्या खूब कहा है, दूसरों की सुनोगे तो खुद को भूल जाओगे। अपनी आवाज़ बुलंद करो तभी पहचान बनाओगे। शेर की तरह जीने का शौक है हमें, डर के साए में जीना हमारी फितरत नहीं। खुद को इतना कमज़ोर मत समझो कि किसी के बर्ताव से टूट जाओ। सखियों, अपने लिए बोलना कोई अहंकार नहीं बल्कि अपनी आत्मगरिमा को बनाए रखना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। इसलिए अपनी बात राय को मायने दें, अपनी बात का सही तरीके से रखना सीखिए। इसी के साथ आइए सुनते हैं एक गीत, और गीत के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। अभी सुनते हैं MD अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, अक्सर हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में हर बात पर हाँ कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई ऐसी चीज़ मांगे जो आप नहीं करना चाहते तो बिना अपराध बोध के मना कर दें, या फिर बोल सकते हैं कि मेरे अभी शेड्यूल बहुत व्यस्त है। हमें ना भी कहना सीखना चाहिए। किसी से बात करते समय आत्मविश्वास के साथ आंखें मिलाकर बात करें। झुककर बैठने या खड़े होने के बजाय सीधे रहें। इससे आप और आपकी बातें प्रभावशाली लगते हैं। सखियों, यदि कोई आपका मजाक या उपहास उड़ा रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो उस समय आप शांति से बोल दें, मुझे यह पसंद नहीं है, इसे दोबारा ना बोलें। किसी भी बात को सोच समझ कर बोलें। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन बिना समझे ना बोलें। यदि बात गलत है तो गलत के खिलाफ भी बोलना ज़रूरी है। सखियों, खुद को महत्व दें। ये आपके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसके लिए अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को महत्व दें। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हो, और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दें। अपनी सफलताओं और छोटे प्रयासों का जश्न मनाएं। साथ ही सखियों, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलें। साथ और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और हेल्दी भोजन लें। रोज़ाना व्यायाम करें। अच्छी नींद लें। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझें और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करें। अपनी कदर करने से न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि दूसरे लोग भी आपका सम्मान करते हैं। सखियों, अपने लिए बोलना एक कौशल है। इसमें समय लगेगा, लेकिन हर बार जब आप अपनी आवाज़ उठाते हैं तो और मजबूत होते जाते हैं। भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे की बजाय वर्तमान के क्षण का आनंद लें। ध्यान यानी कि मेडिटेशन या सांस लेने की तकनीक से मन को शांत रखें। वह काम करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, भले ही वह कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। सखियों, अपने जीवन का मोल समझें और इस जीवन में खुद के लिए और खुद की शर्तों पर जिएं। इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सखियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला शख्सियत के बारे में जो भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल रही, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में एक बेहद प्रेरणादायक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे। वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का पद पाने वाली और भारतीय सशस्त्र बलों में 3-स्टार रैंक तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इनका जन्म 31 मई 1946 को लाहौर में हुआ था। 1947 के विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया और सराहनपुर उत्तर प्रदेश में बस गया। उन्होंने 1963 में AFMC पुणे में दाखिला लिया और अपने बैच की टॉपर रहीं। साथ ही 1968 में वे आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुईं। सखियों, 2004 में वे भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। उन्होंने न केवल सेना में अपनी सेवा दी बल्कि वे भारतीय नौसेना की पहली महिला सर्जन वाइस एडमिरल भी बनी। वे पुणे स्थित आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की कमांडेंट बनने वाली पहली महिला अधिकारी थीं। साथ ही सैन्य अस्पतालों में स्त्री रोग संबंधी एंडोस्कोपी, ऑनकोलॉजी और असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सखियों, अपने 36 साल के शानदार करियर के दौरान उन्हें 15 पदक और पुरस्कार मिले। परम विशिष्ट सेवा पदक और सेना पदक, स्त्री रोग संबंधी चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना के लिए और विशिष्ट सेवा पदक 2002 के कालूचक आतंकवादी हमले के पीड़ितों के नेतृत्व में कुशल नेतृत्व के लिए हुआ। सखियों, और अब आइए सुनते हैं चलते चलते एक और गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

सखियों, अभी हम सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को। ये गीत हम हैं प्यार के राही से लिया गया था। और अब समय हो गया है सखियों आपसे विदा लेने की। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी सुनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

घर आंगन, अभी आप सुन रहे थे महिला बहनों के लिए किए जा रहे इस कार्यक्रम का प्रसारण। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण।

अरवा देखी सुरता से आजकल रह रह के बारिश हो रहा बा, ऐसन में हमनी के कौनो काम सावधानी पूर्वक करे के चाहिए। देखी खेती गृहस्थी जो भी होके अभी कुछ गेहूं के भंडारण भी करे होके तो ओकरा के नमी हटा के ही भंडारण करे के चाहिए। आ एकरा के नमी रहित यदि रहित ठीक बा, ओकरा में नमी युक्त यदि गेहूं हुई तो बहुत काफ़ी परेशानी हो जाए, ओकरा में बहुत से फफूंद या कीटनाशक के प्रयोग प्रकोप हो जाला, जौना से हमनी के भंडारण में ही गेहूं बर्बाद हो जाला। ऐसे गेहूं के भंडारण करे से पहले गेहूं के हमनी के पूरा सुखा लेवे के चाहिए, यानी 14% से नमी कम होके तबे गेहूं के भंडारण करी। ओकरा खातिर धूप में सुखा ली या ऐसे भी रखब तब सूख जाए कुछ दिन में। तो देखी इस तरह से हमनी के पूरा कोनो भी काम कर जा सावधानी पूर्वक कर जा। श्रोता सब हमनी के पास कोनो काम होके रोग होके या कष्ट होके घबराए के ना चाहिए। हर रोग के दवा बा, बस थोड़ा सा धैर्य और आत्मबल के जरूरत बा। हमनी के आपन देखी कर्म के अनुसार फल मिलेला। बहुत से लोग घबरा जालन, बहुत से लोग निराश हो जालन, लेकिन निराश होके की जरूरत नहीं के हमनी से भी दुखी बहुत से लोग बढ़ हमनी से सुखी भी बहुत से लोग बढ़ ऐसे हमनी के आगे और पीछे दोनों तरफ देख लेवे के चाहिए कि बहुत ऐसा कष्ट हमरे पर खाली नहीं के ऐसा कष्ट बहुत से लोगन पर बा। तो इस तरह से थोड़ा सा हमनी के विचार करके ही आगे बढ़े के चाहिए। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले लिया जा। देखी विश्व रेड क्रॉस दिवस आज बाटे, आ ये अवसर पर हमनी के विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस के महत्व जानल जाए। एक बाद एगो लोकगीत के आनंद लिया जी, कलाकार रहब भरत सिंह भारती। आ एक बाद एगो भेंट वार्ता सुनल जी, विषय रहे बिना ऑपरेशन होम्योपैथी में उपचार। भेंट वार्ता कार रहब डॉक्टर AN तिवारी, यहाँ से भेंट करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। एगो जानकारी के तहत हमने के सुनल जी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, आ दूसरा जानकारी है रविन्द्रनाथ टैगोर के जयंती। आ कार्यक्रम के अंत में हमने के मौसम के पूर्वानुमान जानल जाए, आ बीच में कहीं संदेश भी सुनल जाए। तो आई आज के हमने के चर्चा बा रेड क्रॉस के महत्व का बा। श्रोता सब है विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आई अभी पहले हमने के ई जानल जाओ कि रेड क्रॉस के महत्व का बा। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई के मनावल जाला। ई दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट के जयंती के रूप में मनावल जाला। मानवता करुणा और सेवा के भावना से समर्पित बा। ई दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांत के याद करे खातिर और स्वयं सेवक के मानवीय कार्य के सम्मान देवे खातिर भी मनावल जाला। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 के मनावल गई। हेनरी डुनेट रेड क्रॉस के संस्थापक के जन्म 8 मई 1828 के जिनेवा स्विट्जरलैंड में भई रहे। रेड क्रॉस दुनिया के सबसे बड़ा स्वतंत्र निष्पक्ष और तटस्थ मानवीय संगठन है, जौन के मुख्य उद्देश्य बा युद्ध महामारी और प्राकृतिक आपदा के समय बिना कोनो भेदभाव के घायल सैनिकन नागरिकन और पीड़ितन के राहत पहुँचावल। इस संस्था शांति और युद्ध के दौरान जीवन बचावे और मानवीय पीड़ा के कम करे काम करेला। आपदा प्रबंधन और राहत, प्राकृतिक आपदा जिसे माननीय बाढ़ बा, भूकंप बा और आपात स्थिति में पीड़ित के तत्काल सहायता, भोजन और चिकित्सा उपलब्ध करावल भी एकर उद्देश्य बा। युद्ध और संघर्ष में भी सहायता, युद्ध के दौरान में घायल सैनिक और नागरिक के रक्षा कइल तथा सुरक्षित स्थान पर पहुँचावल भी इस संस्था के काम बा। स्वास्थ्य सेवा और रक्तदान, महामारी के समय सहायता, फर्स्ट एंड प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलावल भी इस संस्था के काम बा। मानवीय सेवा के 7 सिद्धांत, इस संस्था मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वेच्छा, सेवा, एकता और सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर काम करेलन, जौन विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक है। इस संस्था

कीर्तन खातिर एगो उम्मीद के किरण बन जाला जौन दुनिया भर में 17 मिलियन से अधिक स्वयं सेवक के साथ मानव सेवा में जुड़ल बा। तो देखी रेड क्रॉस के महत्व हमनी के जीवन में कितना बा। सही में रेड क्रॉस के हमनी के महत्व दिहल जा। आई अब हमनी के एगो लोकगीत के आनंद लिया जा। आज के कलाकार बानी भरत सिंह भारती।

0: देखी श्रोता सब कितना बढ़िया गीत भरत सिंह भारती सुनौनी। ये गीत सुन के तो मन एकदम गदगद हो गई आ श्रोता सब रौरो सब के मन ऐसी हरियर हो गई। तो देखी बहुत से लोग डरा जाते हैं कि ऑपरेशन से कोनो बीमारी बा तो एक चीड़ फाड़ से, तो देखी बहुत से दवा बा, बहुत से ऐसे इलाज बा जोन बिना ऑपरेशन के भी संभव बा। देखी बिना ऑपरेशन के होम्योपैथ में भी उपचार बा, हमनी के ओकरा बारे में जाने के चाहिए। आ देखी आज यही विषय पर हमनी के जानकारी ले ली कि बिना ऑपरेशन होम्योपैथ में उपचार कैसे बा, का बा, एकरा बारे में बताई डॉक्टर A.N. तिवारी जी, और यहाँ से बातचीत करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी। तो आई सुनल जाओ।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर में कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका इलाज बिना ऑपरेशन के संभव नहीं हो पाता, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा इलाज है कि बिना ऑपरेशन के कई रोग ठीक किए जा सकते हैं। कैसे ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी से, कितना कारगर है, कितना सक्षम है, इन बातों की जानकारी के लिए आज हमारी भेंट हो रही है कुदरा में प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर M.N. तिवारी से। आपने होम्योपैथी की शिक्षा ली है विधिवत और साथ ही काफ़ी लंबा अनुभव है जी, आपका स्वागत है। M.N. तिवारी जी, ये बताइए कौन कौन से ऐसे केसेज होते हैं जिनको कि होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है?
2: हमारे पैथ में तो जो भी जितनी भी है एलोपैथ से रिटायर्ड केसेस
1: जी,
2: दो चार ऑपरेटेड है, यानी जिसको कि ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है
1: जी जी,
2: तो वैसे केसेस को हम लोग अपने होम्योपैथिक दवाओं से उसको ऑपरेट कर देते हैं
1: जी।
2: अब उसके अंदर क्या है लक्षण, उसको क्या है कोलेलिथियसिस यानी स्टोन इन गाल ब्लडर
1: जी,
2: रीनल स्टोन, स्टोन इन किडनी, है ना, यूरेटर, इस तरह के केसेस को हम लोग लक्षण पेशेंट को क्या कंप्लेन हो रहा है, क्या क्या तकलीफ हो रही है, उसके मुताबिक लक्षणों को एक जगह एकत्रित करने के बाद दवाओं का चुनाव होगा और जो दवा मेन आएगी वो रेमेडी होगी और वही रेमेडी उस केस को ऑपरेट कर देगी
1: जी।
2: लेकिन थोड़ा टाइम लेता है,
1: टाइम लेता है,
2: टाइम लेता है।
1: जैसे आपने कहा कि गॉल ब्लेडर में अगर पथरी है
2: जी,
1: या फिर किडनी में पथरी है
2: जी,
1: तो क्या ये शुरुआत में ही पता चल जाए तब ये संभव है, या फिर पथरी जब बड़ी हो जाती है तब भी ये गला सकता है?
2: नहीं, पथरी बड़ी भी हो जाए तब भी गला सकता है, बशर्ते कि वो कॉमन बाइल डक्ट एक होती है गाल ब्लैडर पित्त की थैली में
1: जी,
2: वो कॉमन बाइल डक्ट होती है, चारों तरफ से आता है, वो कॉमन होती है
1: जी,
2: उसमें जो है वो आके बाइल को ड्रेन करता है। तो कॉमन बाइल डक्ट में आकर के अगर स्टोन फंस जाता है तो वैसे सिचुएशन में उसको जॉन्डिस हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है
1: जी जी।
2: तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इमीडिएट कह देते हैं कि आप सर्जिकल ऑपरेशन करा लो
1: जी।
2: और नहीं, यदि CBD में नहीं है, कॉमन बाइल डक्ट में नहीं है, तो उसके लक्षणों के आधार पे हम अपनी दवाओं का चुनाव करके और उस मरीज को हम उसके स्टोन को डिजॉल्व कर देते हैं
1: जी,
2: हाँ, गला देते हैं। 4 महीने कराने के बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराने पे कंपेटिबली पेशेंट को बता देंगे कि पहले आपका 4.5 mm का था, अब ये 4 महीने मैंने दवाई किया तो 1.5 हो गया
1: जी।
2: तो इस तरह से पेशेंट का जो है मैंने वो क्या कहते हैं मनोबल बढ़ता है कि नहीं मैं दवा इनका करूं।
1: M.N. तिवारी जी, जैसा आपने कहा कि हम जांच कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, लेकिन जो होम्योपैथी है ये तो लक्षणों पर आधारित है, क्या अब इसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है उसकी भी सहायता आप लोग लेने लगे हैं
2: जी? नहीं नहीं, ऐसा है एक्चुअली हम लोगों के यहाँ ये मेडिकल साइंस है, मैंने बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी
1: जी,
2: बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिकल साइंस वो ऑल आर इक्वल, बस वे ऑफ मैनेजमेंट जो है अलग अलग है, वो एलोपैथिकली करते हैं, हम होम्योपैथिकली करते हैं
1: जी।
2: ऐसे में हम आपका यूरिन चेकअप कराएंगे, आपका ब्लड चेकअप कराएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एंड एवरीथिंग आपका ECG कराएंगे, यानी सब चीज हम लोग पढ़े हुए हैं
1: जी,
2: बिकॉज हम लोग पढ़ लिख करके एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन के यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: है ना, तो सो दैट सभी चीजों की जानकारी है। अब उसमें क्या है कि अगर बाइल बढ़ गया, जॉन्डिस हो गया, तो वैसी परिस्थिति में कौन कौन लक्षण देगा, तो जो जो लक्षण दे रहा है तो

0: उसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर देते हैं कि भाई आप इसका रिपोर्ट लेके आ जाओ
1: जी।
0: और पहले उसके लक्षण के मुताबिक दवा मैनेज कर देते हैं और कह देते हैं कि जो सेकंड टाइम मेरे पास आओ तो उस टाइम में जो है रिपोर्ट के साथ आओ, ताकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो डायग्नोसिस है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक मैं कन्फर्म हूँ कि नहीं,
1: सही है कि नहीं,
0: सही है कि नहीं
1: जी। एमएन तिवारी जी, जैसा कि कहा जाता है कि आँख का मोतियाबिंद जो होता है वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता।
0: जी जी जी।
1: क्या होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं क्या कि उसको काट सकती हैं, खत्म कर सकती हैं?
0: खत्म कर सकती हैं
1: जी।
0: और एक्चुअली जब यदि वो मैच्योरिटी ऑफ कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद यदि पक गया है, तब तो उसको हम लोग कह देते हैं कि इमीडिएट गो एंड टेक योर ऑपरेटिव प्रोसेस। तो अगर नहीं मैच्योर हुआ है तो हम लोगों के पैथ में दवाइयां हैं कि उसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं
1: जी।
0: हाँ, उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स है और सो मेनी मेडिसिन्स है
1: जी।
0: उसको हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। और प्लस दूसरा ये है कि मान लेते हैं कि सेकेंडरी टर्सरी स्टेज में पहुंच गया है
1: जी।
0: तो टर्सरी स्टेज में पहुंचने के बाद वो ऑपरेशन के लिए गया तो क्या तो डॉक्टर साहब कहे कि अभी तो हार मैच्योर नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग उसको क्या करते हैं कि दवाओं से उसकी मैच्योरिटी की ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर देते हैं
1: जी।
0: जैसे उसका मैच्योर होने वाला है 10 दिन में, तो अपनी दवाओं के बदौलत उसका 10 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। 10 महीने बाद वो मैच्योर होगा और जब मैच्योर होगा तो फिर वो ऑपरेशन कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसे एक शरीर में अगर कहीं घाव हो जाता है
0: जी,
1: तो कई घाव तो अपने से फट जाते हैं
0: जी,
1: कुछ घावों का ऑपरेशन कराना पड़ता है
0: जी जी।
1: क्या होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं कि या तो घाव को पका के अपने आप फाड़ दें या फिर ऑपरेशन न करना पड़े और उसको ठीक किया जा सके?
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ऐसी ये सब सारी परेशानियों की हमारे पैथ में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं
1: जी,
0: जिसको कि हम लोग इवन इंजेक्शन एब्सेस
1: जी,
0: इंजेक्शन एब्सेस किसी से इंजेक्शन आप डलवाए और जहाँ उसका नीडिल इनसाइड किया वहाँ जाके एयर पुशअप कर दिया
1: जी जी।
0: अब वो एयर को हम निकालते हैं, 1 महीने टाइम लग जाता है और विदाउट बाती कूचे हुए अपनी मेडिसिन से ही सारा चीज कर लेते हैं। और एक बार देख लेने के बाद फिर हम लोग जो है ना, पर्टिकुलरली माई सेल्फ, मैं उसका फस भी नहीं छूता हूँ। और हमारे इलाके में खास करके शाहपुर हो गया, ओयना हो गया, ये इटही हो गया, केवड़ी हो गया, भदौला हो गया, इस इलाके में हमारे नाम के मतलब लोग घाव का डॉक्टर समझते हैं
1: जी।
0: जैसे आपका ऑपरेटिव केस कॉर्न्स, यानी गुड़खुल, देहाती शब्दों में उसको गुड़खुल कहते हैं
1: जी।
0: तो उस गुड़खुल को अगर ऑपरेटिव मेथड में आप जाते हैं तो उसका थोड़ा सा भी पोर्शन अगर छूट गया, बाय द वे छूट गया
1: जी,
0: तो आजकल के सिचुएशन में तो देख रहे हैं कि पेट खोल दिए और उसके अंदर तमाम गौज कॉटन सब करके और बांध दिए, और पेशेंट को जब कंप्लेन हुआ तो फिर डॉक्टर के पास गया, उसका सोनोग्राफी हुआ, सोनोग्राफी के दौरान मालूम हुआ कि उसके अंदर गौज और कॉटन छूट गया है, सीजर छूट गया है। तो आई मीन टू से कि जो गुड़खुल है उसको जड़ से यदि नहीं निकाल पाए, थोड़ा सा भी पोर्शन होगा तो फिर डेवलप करेगा। लेकिन हमारे पैथ में है कि उसको हम अपनी मेडिसिन से विदाउट एनी स्कार, विदाउट एनी स्टिच, हम उसको ऑपरेट करके बाहर कर देते हैं
1: जी। और जैसा कैंसर के बारे में भी कहा जा रहा है कि आजकल होम्योपैथी में इसका इलाज हो रहा है
0: जी जी,
1: ये कहां तक कारगर है?
0: इसमें भी हमारी पैथी बहुत कारगर है। और ऐसे में जो है पेशेंट को क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। हमारी पैथी कहती है कि ट्रीट दी पेशेंट नॉट दी कंप्लेन, यानी उसको कैंसर है उससे कोई मतलब नहीं है। कैंसरस प्रॉब्लम में उसे क्या सिम्टम्स उसके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस सो मेनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तो कंस्यूट कर लिए कि वो कैंसर से सफर कर रहा है
1: जी।
0: लेकिन तुम्हें ट्रबल क्या है, उस ट्रबल का हम लोग अपने पैथ से मैनेजमेंट देते हैं। और टाइम विल कम कि वो जो है पेशेंट आके कंप्लेन करता है डे बाई डे कि डॉक्टर साहब पहले से हम अच्छे हैं, पहले से हम अच्छे हैं
1: जी।
0: ऐसे करवंदिया वगैरह का केसेस कैंसरस हमारे ट्रीटमेंट में रहा
1: जी,
0: कई केसेस रहे
1: जी।
0: तो हमारे पैथ में इसकी भी बहुत अच्छी दवाई है।
1: उसके लिए पहले तो जांच कराते होंगे आपकी?
0: वो तो लास्टली ये लोग जो पहुंचते हैं ना, उस डॉक्टर से दिखा के, इस डॉक्टर से दिखा के, वहां इन्वेस्टिगेशन करा के, वहां एक्सरे करा के
1: जी।

0: लास्टली जब वो डॉक्टर लोग कह देते हैं कि अब ये जाएं घर पे जाके और आराम करें, जितने दिन जीना है इनका सेवा कीजिए, तब लोगों के दिमाग में आता है कि क्यों ना हम होम्योपैथी के इलाज में चलें।
1: जी।
0: जब तक जिंदा हैं तब तक हम कम से कम होम्योपैथिक दवा खाएं, कहा जाए उससे ठीक हो जाए। तो ये सिचुएशन होती है। और ऐसे समय में हम लोगों के पास पेशेंट आता है जबकि कैंसरस प्रॉब्लम की स्पीड 90-95 हो जाती है, क्योंकि उसमें स्पीडली सेल्स मल्टीप्लाई करता है ना।
1: जी जी।
0: और वो लोग रेडियम थेरेपी दे करके उसको जो है और स्पीड दे देते हैं, जिससे जो है पेशेंट को अगर 2 साल जीना है तो पेशेंट साल भर में ही मर जाता है।
1: जी। तो उसके बाद जब आता है तो कहां तक आप लोग सफल हुए हैं, जैसा आपने कहा कि कई केसेस आए।
0: हाँ जी।
1: तो उसमें सफल हुए या?
0: जी नहीं, सफल हुए।
1: जी।
0: ये ग्लैंड कैंसर था
1: जी,
0: उसमें सफल हुए। उसके बाद एक केस था लीवर कैंसर, उसमें सफल हुए
1: जी।
0: ये सभी पेशेंट्स हैं
1: जी,
0: अभी अलाइव हैं
1: जी।
0: और चारों तरफ से आ करके थक के जबकि ट्रीटमेंट दिए, 10 साल मस्त रहा, उसके बाद फिर उसको कंप्लेन हुआ तो फिर इन्वेस्टिगेशन कराया, उसके बाद तमाम दवाइयां खरीद के बनारस से फिर मेरे यहाँ आया, मेरा पैर पकड़ लिया कि सरकार हमरा के अब हम मरी भाजी रोगे इलाज में रहो। उस वक्त तक उसकी स्पीड 90 और 95 की पहुंच चुकी थी। तो वैसे स्टेज में हम लोग होम्योपैथिकली, चूंकि अब जो चीज पहुंच गया है, ये टाइम टेकिंग लोग कह देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, लोग कह देते हैं कि नहीं तो दवाइया समय लेबे करेला। नहीं, आपका रोग ही कुछ इस तरह का है कि उसमें आपको कुछ दिन टाइम देना पड़ेगा
1: जी। तो इस तरह से आप लोग इलाज कर रहे हैं
0: जी,
1: बिना ऑपरेशन के होम्योपैथी में इलाज संभव है
0: जी।
1: वैसे केसेस का जिसमें कि ऑपरेशन जरूरत पड़ती है
0: जी।
1: तो डॉक्टर एम एन तिवारी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: देखें श्रोता सभी, एन तिवारी और डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी के बात से कितना राहत मिलल, कितना श्रोता सभी लोग लाभ ले सकतनी हमनी के। आ बहुत बढ़िया बात बताओ तनिया कि बिना ऑपरेशन के भी होम्योपैथी में उपचार बा, हमनी के घबराए के ना चाहिए आ कोनो भी रोग से हमनी के ना घबराए के चाहिए। आ एकरा खातिर हमनी के एक डॉक्टर ना दो डॉक्टर ना कहीं ना कहीं दूसरा जगह जाकर एकर इलाज करावे के चाहिए। तो इतना बढ़िया जानकारी देनी जा, ये जानकारी खातिर हमनी के एन तिवारी और डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी के बहुत बहुत धन्यवाद दे दिया जाओ। आई अब हमनी के एक जानकारी के तहत देखल जाओ, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस से श्रोता सभी 9 मई के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के मनावल जला। हर साल मई और अक्टूबर के दूसरा शनिवार के ई मनावल जला। ई दिवस वर्ष में 2 बार आयोजित होला ताकि पक्षियन के अलग अलग मौसम में प्रवासन के अनुसार जागरूकता फैलावल जा सके। बसंत में 9 मई 2026 के, शरद में 10 अक्टूबर 2026 के मनावल जाए। ई दिवस प्रवासी पक्षियन के संरक्षण और उनका सामने आवे वाला चुनौतियन के बारे में जागरूकता बढ़ावे खातिर मनावल जाला। 2026 के विषय बा हर पक्षी मायने रखेला, हमनी के अवलोकन करे के अवलोकन महत्वपूर्ण बा, यानी कि हर पक्षी माने रखता है, आपके अवलोकन का बड़ा महत्व है। देखी श्रोता सभी, हमनी के पक्षी तो माने रखते बा, कहो हमेशा बतावे नहीं जा कि हमनी के पक्षी जौन बाड़ी कीटाणु के कीट के माने नष्ट कर दिली, जो ना सबनी के खेती में भी बढ़ोतरी होला। आप बहुत देखते हैं कि बहुत से गिद्ध समाप्त हो रहा बन, तो ऐसा बड़ा बड़ा पेड़ जोन हमने ये काट के धराशाई कर देनी जा, उनका आश्रय ही समाप्त कर देनी जा, तो वो रह निखन पाओत। तो ऐसे इस सब के जागरूकता, उनके पास का चुनौती बा, का समस्या बा, ये सब के बारे में हमने के अवलोकन करनी जा। यही अवलोकन खातिर हमने के जागरूकता बढ़ावनी जा, ये जागरूकता के बढ़ावे खातिर हमने के ई प्रवासी पक्षी दिवस मनावनी जा। आई एगो संदेश सुना जा, फिर आगे चर्चा हुई।
3: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देही ओके बुलंदियन के पांख।
4: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
3: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
4: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
3: बुकिंग खातिर संपर्क करें 8700001424।

0: चार दो पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
2: देखिए अभी हमने के संदेश सुनत रह जा। श्रोता सब है, रविन्द्रनाथ टैगोर के जयंती कल 9 मई के मनावल जा रहा बा। रविन्द्रनाथ टैगोर के जयंती पश्चिम बंगाल और बंगाली कैलेंडर के अनुसार 9 मई 2500 बैशाख के आसपास मनावल जाला। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये हर साल 7 मई के मनावल जाला। विशेषकर भारत के अन्य हिस्सा में 2026 में बंगाली कैलेंडर के अनुसार 9 मई के मनावल जा रहा बा। उनकर जन्म 7 मई 1861 के ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार भइल रहे। यही के उपलक्ष में हमनी के रविन्द्रनाथ टैगोर के जयंती मनावनी जा। आ कोनो भी जयंती मनावे के मतलब होला जन्म से लेके मरण तक उनकर उपलब्धि के गिना के, उनकर उपलब्धि दिखा के, उनकर उपलब्धि के अनुसरण करके कोशिश कइल जाला। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर हमनी के देश के बहुत कुछ दिहनी आ एकरा खातिर हमनी के उनकर याद करनी जा। आ याद करके ही जयंती मनावल जाला। ये जयंती के दिन हमनी के एगो संकल्प लेवे के चाहिए हर भारतवासी के कि भारत देश के रक्षा तन मन धन से कर जाओ। आ एकरा खातिर हमनी के आगे बढ़ के रह जाओ। आई अब हमनी के कुछ सलाह बा, जैसे हमनी के आगामी दिन में वर्षा के संभावना के देखत खेत में काटल फसल के सुरक्षित स्थान पर ढक के रखी आ खड़ा फसल में सिंचाई एकदम स्थगित कर दी। खाद और कीटनाशक के छिड़काव आसमान साफ रहला पर ही करी। लघु संदेश बा सलाह कि खड़ा फसल में सिंचाई एकदम स्थगित कर दी आ खाद आ कीटनाशक के छिड़काव जब भी करे के बाद आसमान साफ रहला पर ही करी। मूंग खातिर विशेष विशेष सलाह बा, मूंग और उड़द के फसल में रस चूसक कीट माहू हरा फुदका सफ़ेद मक्खी और ग्रीसम थ्रिप्स कीट की निगरानी करत रही। बचाव खातिर मेलाथियान 50 EC या डाइमेथेट 30 EC के 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से फसल पर छिड़काव करी वर्षा न होके की स्थिति में, तब एकरा से लाभ रुआ ले सकत बनी। श्रोता सब मौसम देखल जाओ, आज तक खैर बीत गई, कल के मौसम देखल जाओ। कल वर्षा जौन बा एकदम 0 mm बा। तापमान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के उम्मीद बा। अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 70% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 25% रहे के उम्मीद बा। हवा के गति जौन बा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकत बा। तो एक के साथ देखें पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही अमित कुमार जी। समय तो एकदम समाप्त हो गए। चलत चलत के बेरा से सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा।

अभी आप सुन रहे थे गांव घर कार्यक्रम का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे सांझ गीत कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी फिल्मी गीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ से। लक्ष्मण साहब आदि के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत। फिल्म है गंगा किनारे मोरा गांव।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जब हमनी के आन के बात कैल जाए, जब हमनी के शान के बात कैल जाए, जब हमन के करो या मरो के बात कैल जाए, अब तो जौने हिंदुस्तान खातिर बात कैल जाए, इहो याद करे के पड़ी कि हमन के वो हिंदुस्तान का है, ओकर महत्व का बाटे। एगो बड़ी पुरान गीत आज सबका गावे के पड़ी।

मनोज तिवारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ललकार फिल्म का ये भोजपुरी फिल्मी गीत, जिसे लिखा था धनंजय मिश्रा ने और संगीत भी था इन्हीं का। और अब लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में सुजीत कुमार के संगीत निर्देशन में एक गीत, फिल्म है बलमा बड़ा नादान।

उखेला करिजवा में बदरिया हो। अभी आप सुन रहे थे ये गीत उदित नारायण और कल्पना की युगल आवाज़ में। फिल्म थी बलमा बड़ा नादान, और इसी फिल्म में एक बार फिर आइए सुनते हैं कल्पना और महेंद्र कपूर की आवाज़ों से सजा हुआ एक और गीत, धुन सुजीत कुमार ने बनाई है।

अभी आपने सुना कल्पना और महेंद्र कपूर को फिल्म बलमा बड़ा नादान इसमें, और अब लीजिए सुनिए जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ में नदिया के पार इस फिल्म का एक गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

नदिया के पार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ में। जी हाँ श्रोताओं, नदिया के पार फिल्म के सभी गीत जब भी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बस सुनते रहें। नदिया के पार जो फिल्म है वो आई थी 10 अक्टूबर 1982 को और आज इस फिल्म को करीब 44 साल बीत गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे इस फिल्म का कोई सानी ही नहीं है। इसके गीत आज भी इतने कर्णप्रिय और मधुर लगते हैं कि बस सुनने को दिल मजबूर हो जाता है। और ये फिल्म आज भी मील का पत्थर साबित हुई है, कालजयी फिल्म रही है भोजपुरी सिनेमा की, और जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। और इस फिल्म की रिलीज के समय जब भोजपुरी फिल्मों को कोई तरजीह नहीं दी जाती थी, इस फिल्म ने उस ज़माने में हिंदी फिल्मों से भी ज़्यादा कमाई की थी। 5.4 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म ने 1982 में, जो कि बहुत बड़ी थी। ताराचंद बड़जातिया इसके प्रोड्यूसर थे, राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और डायरेक्टर थे गोविंद मुनीस। तो चलिए नदिया के पार फिल्म की बातें और भी आगे होंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी सुनते हैं कुमार सानू के स्वर में विनय बिहारी का लिखा हुआ एक गीत। फिल्म है सैया से करदा मिलनवा है राम, संगीत तबुन और राजेश गुप्ता का है।

कार्यक्रम के अंत में अभी आपने कुमार सानू को सुना सैया से करदा मिलनवा हेराम इस फिल्म में, और अब इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए सबसे पहले डालते हैं रोहतास जिला में आज की गतिविधि पर एक नज़र। बता दें आपको कि रोहतास जिला में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रोहतास जिला में घरेलू गैस की आपूर्ति हेतु इंडेन के कुल 28 वितरक हैं, जिनके पास कुल 5,423 घरेलू गैस सिलेंडर है। भारत गैस के कुल 7 वितरक हैं, जिनके पास कुल 8,058 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, एवं एचपी गैस के कुल 11 वितरक हैं, जिनके पास कुल 1,822 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। सभी गैस कंपनी के एजेंसी के स्टॉक की नियमित रूप से जांच एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

घरेलू गैस की होम डिलीवरी पूरे रोहतास जिला में निरंतर की जा रही है तथा विभिन्न स्तरों पर उसका अनुश्रवण भी किया जा रहा है। और अब आइए डालते हैं कैमूर जिला की आज यानी 8 मई को हुई कुछ गतिविधियों पर नज़र। तो आपको बता दें कि जिला पदाधिकारी कैमूर महोदय की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सभी संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी कैमूर ने विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी कैमूर ने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। और जिला पदाधिकारी कैमूर की अध्यक्षता में आज 8 मई को जिला कृषि टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कृषि विभाग अंतर्गत संचालित गर्मा बीज वितरण, फार्मर रजिस्ट्री, उर्वरक की उपलब्धता एवं छापेमारी अभियान, पक्का चेक डैम निर्माण तथा तालाब निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी महोदय ने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाते हुए अधिकाधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त पशुपालन, गव्य विकास एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। मत्स्य विभाग द्वारा संचालित पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण योजना, नाव एवं जाल पैकेज वितरण, बोरिंग सह सोलर समरसेबल पंप सेट योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। और कैमूर जिला में आज 8 मई 2026 को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अंतर्गत 127 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला पदाधिकारी कैमूर की अध्यक्षता में आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में दिव्यांगजनों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के उपरांत 127 पात्र दिव्यांगजनों के आवेदन स्वीकृत किए गए, जिन्हें शीघ्र ही बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से दिव्यांगजनों की गतिशीलता, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक सहभागिता में वृद्धि होगी तथा वे अपने दैनिक कार्यों को अधिक सहजता एवं सम्मानपूर्वक संपादित कर सकेंगे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि चयनित लाभुकों को ट्राई साइकिल वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध एवं सुगम तरीके से पूर्ण की जाए। साथ ही लाभार्थियों के पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन एवं वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया को चरणबद्ध ढंग से संपन्न कराने का निर्देश भी उन्होंने दिया। और अब इसी के साथ कार्यक्रम में अब सुनवा देते हैं आपको एक गीत मोहम्मद रफ़ी की सुरीली आवाज़ में दोस्ती फिल्म से। तो चलिए सुनते हैं।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास, ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आज सब गीत लगी इनका धन्यवाद देवे।
1: देखिए बहुत निमन निमन सही में गीत सुनौलन हाँ,
0: लेकिन एक साथे अब घड़ी के सुइया भी
2: 0612-222-5042 हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी
2: लाभ वाणी
3: आकाशवाणी
4: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य मंत्रिमंडल में परिवारवाद को तरजीह देने का लगाया आरोप। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। और केंद्र सरकार ने बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने आज कार्यभार संभाल लिया है। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि विभाग के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए ठोस कार्यनीति बनाई जाएगी।
1: राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा। नीचे स्तर पर विभाग की काफी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके।
0: सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद श्रवण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
2: तो जो सूचना तंत्र है उसको और मजबूत करना पड़ेगा और इसी माध्यम से सरकार का सारे कामों को जन जन तक पहुँचा रहा है। सरकार ने जो किया है उसको लोगों तक पहुँचाना इस विभाग का मुख्य काम है। इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आगे ले चलने का प्रयास करूंगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वे ईमानदारी से काम करेंगे।
3: पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रही कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँ।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी।
4: सबके साथ बैठेंगे, बैठ के समस्या समझेंगे और सब मिलके समाधान ढूंढेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार।
0: कला और संस्कृति विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा,
2: जन तक पहुंचा रहा है। सरकार ने जो किया है उसको लोगों तक पहुंचाना इस विभाग का मुख्य काम है। इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आगे ले चलने का प्रयास करूंगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वे ईमानदारी से काम करेंगे।
3: पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रही कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या

0: समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: सबके साथ बैठेंगे, बैठ के समस्या समझेंगे और सब मिलकर समाधान ढूंढेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार।
1: कला और संस्कृति विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा

0: चंद्र प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए, सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं।
1: भाजपा के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज कोलकाता में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा की। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। इधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपना

0: विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज पटना, वैशाली, सारण, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से होगा। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के सहुरिया पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय मुरजा में मध्याह्न भोजन खाने से दो दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद सौर बाजार पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कल भी जिले के एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 300 से अधिक बच्चे बीमार हो गए थे। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा कि मामले के हर बिंदु की जांच की जा रही है। मुंगेर जिले की ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस ने 450 ग्राम ब्राउन शुगर और लगभग 100 ग्राम व्हाइट ड्रग्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सुपौल के कुनौली बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की टीम ने 40 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। गया जिले के मानपुर केरे रोड स्थित एक घर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 935 बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पशु तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने 146 पशुओं के साथ 5 ट्रक को जब्त किया है। साथ ही 7 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। रोहतास जिले के परथुआ थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई जबकि 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य मंत्रिमंडल में परिवारवाद को तरजीह देने का लगाया आरोप। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। और केंद्र सरकार ने बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया की

0: is All India Radio, the news.
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: वैशाली जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। इस चरण के अंतर्गत प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा मकानों का चिन्हांकन भी किया जा रहा है। सर्वे के दौरान परिवारों से सामाजिक, आर्थिक एवं आवासीय स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है। प्रशासन की ओर से पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व जिले में स्वगणना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 17 अप्रैल से 1 मई तक चले इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान नागरिकों ने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरकर जनगणना में भाग लिया। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील

0: पदार्थों की आपूर्ति सुचारू रूप से जिले की 67 गैस एजेंसियों के माध्यम से 8 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा एजेंसियों में उपलब्ध स्टॉक वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी की लगातार समीक्षा की जा रही है। कालाबाजारी और अनियमितताओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी और छापेमारी अभियान भी चलाया गया। जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी शिकायत की सूचना प्रशासन को देने की अपील की। बीते दिनों वैशाली जिले में फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत 112% लक्ष्य हासिल कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई। अभियान के दौरान 2,40,000 से अधिक किसानों का डिजिटल पंजीकरण किया गया। गांव-गांव विशेष अभियान चलाकर किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक किया गया तथा कृषि विभाग के कर्मियों द्वारा शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण किया गया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन के किसानों को सरकारी योजनाओं, अनुदान और कृषि संबंधी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इसके साथ ही उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में 150 वर्ष पुरानी दुर्लभ कबीरपंथी पांडुलिपि प्राप्त हुई है। यह पांडुलिपि भक्ति आंदोलन, संत परंपरा और उस समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें कबीरपंथ से संबंधित कई दुर्लभ संदर्भ और ऐतिहासिक जानकारियां मौजूद हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसके संरक्षण, डिजिटलीकरण और सुरक्षित संग्रहण की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे शोधार्थियों और इतिहासकारों के अध्ययन के लिए भी उपयोगी बताया गया है। जिले के वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की पद्धति अपनाई जा रही है, जिससे पढ़ाई को रोचक और सरल बनाया जा सके। विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों, गीत, चित्रकला और समूह आधारित अभ्यासों के माध्यम से बच्चों में सीखने बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा HPV टीकाकरण अभियान के तहत विशेष अभियान चलाकर 22,000 से अधिक किशोरियों का टीकाकरण किया गया। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित रूप से विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की ओर से किशोरियों और अभिभावकों को HPV वैक्सीन के महत्व और इससे होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि HPV वैक्सीन बेटियों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और यह गंभीर बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया तथा अभिभावकों से सहयोग करने की अपील की गई।
1: अभी आप सुन रहे थे वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:52 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मनपसंद।

ई मनपसंद कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और हमें आप सभी के ईमेल मिले हैं सुंदर सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, सुंदर इसलिए क्योंकि आपने बड़ी ही खूबसूरत लिखावट लिखकर भेजी है और लिखा भी है बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ आप श्रोताओं में से पहली ये खूबसूरती से भरा हुआ नगमा, जी हाँ, फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये बेहद ही खूबसूरत गीत जिसकी पसंद हम पूरी करने वाले हैं, इसे भेजा है फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित ने। और सुंदर हम लोगों ने इसलिए कहा है क्योंकि आपने बड़े ही गुलदस्ता वाले गुलाबी गुलाबी सुंदर सुंदर फूल अपने इस ईमेल में भेजा हुआ है, तो हमें बड़ी ही अच्छा लग रहा है। खैर, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार हैं और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हुई शाम उनका ख्याल आ गया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म से। और अब एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ से सजा हुआ एक गीत आप सभी को सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ इस बार हैं लता मंगेशकर जी और फिल्म है गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई इस फिल्म का ये गीत सुनना चाहा उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। और अब हम शामिल कर रहे हैं कुछ ऐसे श्रोताओं के नाम जिन्होंने कोई सा भी गीत सुनवाने की फरमाइश भेजी है। जी हाँ, आप हैं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और इसी गीत में हम शामिल कर रहे हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ के श्रोताओं को भी। जी हाँ, आप सब हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। आप हैं रेणु मिश्रा, श्वेता रंजन विद्यार्थी, माया रानी, इंद्राणी चौधरी, इसरत प्रवीण, विपांसा भट्टाचार्य और कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता। आपने अपना नाम विपांसा लिखा है तो इसलिए हम यही पढ़ रहे हैं। और शारदा गुप्ता, रंका रानी, नूतन मिश्रा, आप सब ने हमें ईमेल किया है ओल्ड लिसनर्स नॉर्थ बिहार से। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं भरत व्यास, संगीतकार वसंत देसाई।

जीवन में पिया तेरा साथ रहे। जी हाँ, गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़ में। और अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको ब्लैकमेल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, और इसे सुनना चाहा है मंसूरी रेजो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी ने। और लिखते हैं कि ये मनपसंद कार्यक्रम सुनना हमें बेहद ही पसंद है और कृपया कर हमारा फरमाइश सुनवा दें। तो बिल्कुल, हमने आपकी फरमाइश ले ली है और इसी में हम जोड़ रहे हैं उस्मान अली अंसारी को भी। इन्होंने जो गीत पसंद किया है, जा नहीं दिल तोड़ के ऐ बज़्म से जाने वाले, ऐ बज़्म से जाने वाले, ये हमने अभी डाला था तो हमें ये गीत नहीं मिला, और चूंकि आपने फिल्म का नाम भी नहीं लिखा है तो हम नहीं खोज पा रहे हैं। तो चलिए, आप सभी को शामिल करते हैं इसी फिल्म के इसी गीत में। जी हाँ, आप हैं उस्मान अली अंसारी, आमना खातून अंसारी, आशिक अली अंसारी, सुमैला परवीन, सनोवर परवीन, गुड़िया और सऊदी अरब रियाज से आप सब हैं शायद। साथ ही अशरफ अली अंसारी, सारिक अली अंसारी, ये सब आपके दोस्त हैं और आपने लिखा है कि इनके नाम भी पढ़े जाएं, तो बिल्कुल हमने पढ़ दिया। आप हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यसफ अब्बासी। सिकंदरा राउर से हैं मुबीन अब्बासी और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमें ये ईमेल किया ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा ज़िला गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय। शेरपुर कला ज़िला गाजीपुर से हैं अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। तो चलिए, आप सबको सुनवाते हैं ब्लैक मेल फिल्म का ये बेहद ही मीठा गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का।

दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मज़ा है परवाने जानते हैं। इस गीत की बेहद ही सुंदर ये पंक्तियाँ मुझे लगती हैं और यही इस गीत की खूबसूरती भी है। और ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत तो बिल्कुल सदाबहार गीत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आज के हमारे श्रोताओं ने पसंद किया है और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी की पसंद को पूरी करने में। और अब इसी के साथ सूरज फिल्म का गीत सुनना चाहा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। और आप सभी हैं वैष्णो कॉलोनी सनावत से। तो बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने भी पसंद किया है। कांति निकेतन राजनगर से हैं रुद्र गुप्ता, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता। कोई सा भी गीत आप सुनना चाहते हैं, एनी सॉन्ग प्लीज। जी हाँ, इस तरह का ये ईमेल हमें भेजा SM जावेद शगुप्ता अंजुम गुमला झारखंड से। जी हाँ, आप सब गुमला झारखंड से हैं। मेरठ कैंट से आप हैं दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं सूरज फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

सूरज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और श्रोताओं, आप में से कुछ ऐसे श्रोता भी हैं जो हमें एक ही संदेश दो और तीन बार भेज देते हैं, तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक बार ही भेजें और हम उसे तो ज़रूर पूरा करेंगे। जी हाँ, आप हैं अभी अभी शायद मैंने आपका नाम भी पढ़ा था, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई। और इसमें भी आपने 5 गीतों की फरमाइश भेजी है। पहला गीत है राजकुमार फिल्म का गाना, दूसरा है दादा फिल्म का गाना दिल के टुकड़े टुकड़े करके, नया दौर का है रेशमी सलवार कुर्ता, अनाड़ी का बेगानी शादी, फागुन का गाना है एक परदेसी मेरा दिल ले गया, और उजाला का है झूमता मौसम। फिर आपने अगली फरमाइश भेजी कि लोफर फिल्म का गाना सुनवाइए आज मौसम बड़ा। तो कोई एक ही गीत हम आपको सुनवाएंगे, चलिए फिर भी हम आपको सुनवा देते हैं दादा फिल्म का एक गीत दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और इसी गीत में हम शामिल कर रहे हैं जलालाबाद वेस्ट के श्रोताओं को भी। आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिसानी और निमिता आहूजा। और कोई सा भी गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई, शेख चंद फारूक फुलवाले, सैयद खलील, मुबीन भाई और शेख सलीम, तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं दिल के टुकड़े टुकड़े ये सॉन्ग दादा फिल्म से यशुदास की आवाज़ में। गीत लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत है उषा खन्ना का।

जी हाँ श्रोताओं, जो दिल के बेहद ही करीब होते हैं, जब वो जाने लगते हैं या चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सुना सुना लग रहा है और हमारे दिल के तो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारी बाध्यताएँ होती हैं, लेकिन चारों तरफ गम का माहौल तो छा ही जाता है। खैर, हमारे श्रोताओं की आज पसंद की दाद देनी पड़ेगी। एक से बढ़कर एक फरमाइशें इस कार्यक्रम में आज उन्होंने भेजी हैं, और इसी तरह का एक और खूबसूरत गीत सुनना चाहा मेरे सनम फिल्म से। जी हाँ, आप सब हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहांत से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार। मेरे सनम फिल्म का गीत रोका मैंने कई बार दिल की उमंग को, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ज़रूर सुना दें। तो आपको प्लीज़ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम ज़रूर सुनवा रहे हैं इसे। और आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम कुमार, साईं गायकवाड़, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले, और ये गायकवाड़ परिवार थे रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री और अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, श्याम कुंवर, नटखट, आसमा, दीपक, अनुश्री, टाउनशिप सेक्टर आज भिलाई नगर से फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। तो चलिए आप सभी को सुनवा देते हैं इसी गीत को, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत।

रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को। जी हाँ, मेरे सनम 1965 में रिलीज हुई इस प्रसिद्ध हिंदी रोमांटिक फिल्म का ये बेहद ही सुरीला गीत अभी आप सुन रहे थे। और सुरीली सी आवाज़, खनकती सी आवाज़, जैसा कि आप जान रहे हैं, आशा भोसले जी की थी। और मखमली सी आवाज़ के साथ साथ निभाया था मोहम्मद रफ़ी ने मेरे सनम फिल्म के इस गीत के साथ ही। अब हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में जो हमारे नए श्रोता जुड़े हुए हैं, जो ईमेल का पता नहीं जानते, तो कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो हमारा ये पता है। और हम बता देते हैं कि हमारा पता है akashvanisasaram@gmail.com, akashvanisasaram@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं हमें दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। और जब भी आप ईमेल करें तो उसमें इंग्लिश में लिखते हैं तो आप स्पेस दें, और अगर हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आप शुद्ध शुद्ध सही सही अक्षरों के साथ लिखें, ताकि हम नाम सही पढ़ें, गीत भी सही सुनवाएं, फिल्म भी हमें खोजने में सहूलियत हो। तो इन सब बातों का आपसे रिक्वेस्ट है कि ख्याल रखिए। और फिलहाल सुनिए ये गीत कन्यादान फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। जी हाँ, गीत के बोल मिल गए आज मेरे सनम। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से इस गीत की फरमाइश आई है। फरमाइश करता है PS नहवाकर, निर्मला और विशाल। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मुरहेकर। और ये हमारे श्रोता नियमित श्रोता हैं और लिखते हैं कि अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करें, हम दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। तो दिल से तो हम आपको शुक्रिया करते हैं। जी हाँ, आप हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। और कोआथ बिहार से हैं नरगिस जफर, कलेर बिहार से बेगम निखत प्रवीण। अब्दुल गफ्फार डावर खुशनशीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, आप सभी हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। और ये विद्यार्थी परिवार हैं गंगजला सहरसा बिहार से। जी हाँ, आप सब हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा के हमारे नियमित श्रोता। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल रॉय, बुल्की वाली और फलना झा। ग्राम पीपरलोच सरगांव छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल कर रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश। और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, आश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने हमें ईमेल किया। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, आप हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। तो चलिए, आप सभी को सुनवाते हैं हम मेरे सनम फिल्म का ये गीत, माफ़ कीजिएगा, कन्यादान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद। जी हाँ, आप सभी हैं ग्राम अकासी सासाराम, जिला रोहतास, बिहार के आलिया, इब्राहिम, कमाल, मिराज, साकिबा, निसार और पंकज कुमार। और आप सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म किसी का भाई किसी का जान इस का कोई सा भी गीत सुनने का, तो सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म का गीत। और इसी गीत में हम शामिल कर रहे हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू को। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। नगर पंचायत इनारा से हैं जयराम सिंह, मदनेश्वर सिंह, सुषमा सिंह, कमला देवी, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी, अंजलि कुमारी, प्रभात कुमार, निधि कुमारी, रुचि कुमारी, हैप्पी, सौरभ, हर्षित, अर्पित, हनी और वीरेंद्र पांडे। और आप हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल, आशुतोष और अभिनव। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। तो चलिए हम अपने रोहतास जिला के इन नियमित श्रोताओं की पसंद सभी को सुनवा रहे हैं। और ये गीत हमने बताया ही था आपको, किसी का भाई किसी की जान इस फिल्म का है, तो चलिए सुनते हैं।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ समय हो चला है कि मनपसंद कार्यक्रम को अब हम यही संपन्न करें। लेकिन चलते चलते हम आपसे कहना चाहेंगे कि चांद ने आज ये दूधिया चांदनी बरसाई है, तारों ने मिलकर ये रात सजाई है। हर रात के बाद उम्मीद भरी सुबह जरूर होती है। इसी शुभकामना के साथ अब रागिनी आप सभी से चाहती है इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। चलिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने

0: कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर

0: कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहा है।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो

0: अब 35 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकाली हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिब

0: 328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94.48 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हम समाचार संध्या रिले कर रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के पूरे 9 बजे हैं। लोकधारा कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आरती माला के स्वर में जोरी के सिनेहिया निसाही। जी हाँ, इस एल्बम से ये भोजपुरी लोकगीत।

आरती माला के स्वर में। अभी आप सुन रहे थे ये पूर्वी, और अब एक और पूर्वी सुनवाते हैं आपको टुकू पाठक के स्वर में, और एल्बम है नीक नहीं लागेला घरवा।

भारत में आज़ादी आई रे, घर घर बाजे बधैया। भरत सिंह भारती और साथियों को अभी आप सुन रहे थे इस राष्ट्रीय लोकगीत एल्बम के इस राष्ट्रीय गीत में। जी हाँ, ये भोजपुरी में देशभक्ति गीत था और अब इसी के साथ हमारा आज का यह लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और आज शुक्रवार है और आज के दिन हम आपको सुनवाते हैं कव्वाली। तो चलिए एक कव्वाली सुनवाते हैं आपको चांद कादरी अफजल चिश्ती की युगल आवाज़ में। इस कव्वाली को लिखा है कमर अमीनी ने और संगीत है चांद कादरी और अफजल चिश्ती का। एल्बम है नसनल्स बोले ये ख्वाजा जी।

और इसी कव्वाली के साथ ही हमारा आज का बंदगी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से हम बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने वाले हैं। अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।
1: बुजुर्गों ने

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।
2: मैं

0: पदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म।

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।

0: की हेरा फेरी है और मत की हेरा फेरी।
1: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर, एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
2: सिकंदर का है?
3: मैं आऊं विशाल।
2: पंडित जी शुरू कीजिए।
4: मंगलम भगवान विष्णु
2: मंगलम गण मद्भजा। अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं।
4: वस्त्र कंधे पर रख लीजिए श्रीमान।
3: सिकंदर, सिकंदर क्या हुआ तुझे? कुछ लगा मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। किससे हुई? बहन किससे हुई?
5: मैं बताती हूँ।
3: नहीं,
5: दिला में मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता।
3: बस बस करो मेम साहब।
2: मेम साहब,
3: क्या काम नहीं तेरी मेम साहब है जिससे तू?
2: नहीं
5: हाँ विशाल, मुझे कुछ सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
3: नहीं नहीं
5: सिकंदर, आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
3: सिकंदर, ये तुमने क्या किया? क्या?
1: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
6: तुम?
7: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
8: मेम साहब, लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना, पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम

पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश बेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है। और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमें

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजे हैं। रसरंग कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कुछ हिंदी एल्बम सॉन्ग। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवाते हैं आपको दिलराज कौर की आवाज़ में सानी असलम का लिखा हुआ एक एल्बम सॉन्ग, जिसकी धुन बनाई आजम अली मुकर्रम ने, और एल्बम है क्या खता थी मेरी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

दिल फिर चला है। अभी आपने इस एल्बम में सुना अनुराग सिन्हा की आवाज़ में ये टाइटल एल्बम सॉन्ग। आकाश बर्नवास ने इसे लिखा था, रामपाल का संगीत था। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और आप आनंद ले रहे हैं कुछ एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रस रंग में। और अब सुनवाते हैं आपको सुमन शेखर मनंदर के स्वर में शाम से ही दिल मेरा। इस एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग गीत और संगीत है इम्तियाज़ वफा का।

सताते हो क्यों निगाहों में आकर। अभी आप ये बेहद ही खूबसूरत गज़ल सुन रहे थे साधना सरगम और जसविंदर सिंह की युगल स्वर में, और हिंदी एल्बम सॉन्ग का ये अंतिम एल्बम सॉन्ग सुनवाते हैं आपको रक्षा श्रीवास्तव के स्वर में। हैदर नजमी के बोल हैं, राजीव महावीर का संगीत है और एल्बम है मंजिल। तेरी मोहब्बत का हर रंग मेरी रूह में उतर गया, तेरी मोहब्बत का हर रंग मेरी रूह में उतर गया, तुझे सोचना तुझे चाहना मेरी आदतों में शुमार हो गया।

रक्षा श्रीवास्तव के इसी एल्बम सॉन्ग के साथ ही हमारा आज का यह गैर फिल्मी एल्बम का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम चित्रपट तराने बस थोड़ी ही देर में, कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। चित्रपट तराने कार्यक्रम में लीजिए सुनिए हिंदी फिल्म संगीत। कार्यक्रम में ये पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको रुस्तम फिल्म से अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की युगल आवाज में। मनोज मुंतशिर के बोल हैं, जीत गांगुली का संगीत।

देखा हजारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आजकल हाल ऐसे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि यूँ मेरे दिल में चले आइए कि आहट भी ना हो, यूँ मेरे दिल में चले आइए कि आहट भी ना हो, वरना लोग देखेंगे तो अफसाने बना लेंगे। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रुस्तम फिल्म के बाद बागी फिल्म से।

अभी आपने बागी फिल्म में सुना अमाल मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज़ें। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर, और चित्रपट तराने कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं नए फिल्मों से कुछ चुने हुए रोमांटिक मीठे दिलकश गीत। तो चलिए अब सुनवाते हैं आपको सोनू निगम की सुरीली आवाज़ में राजेश मंथन का लिखा हुआ एक गीत, संगीत विनय वर्मा का, और फिल्म है फौजी कॉलिंग।

अभी आपने सुना फौजी कॉलिंग फिल्म में सोनू निगम को। श्रोताओं, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हमारे दिल के ख़ास होते हैं, उनके लिए हमारे दिल में हमेशा एहसास होते हैं। वो चाहे वक्त के साथ कितना भी दूर चले जाएं, लेकिन दूर रहकर भी वो ही दिल के पास होते हैं। और जो दिल के पास होते हैं, उन्हें हम याद भी बेसब्र होकर करते हैं, और कभी कभी ऐसी मदहोशी छा जाती है कि बस हम गुनगुनाने लगते हैं।

मेरे दिल की उदास धड़कनों को आपने धड़कना सिखा दिया। मेरे दिल के उदास धड़कनों को आपने धड़कना सिखा दिया। जब से मिलाया आपने दिल से ये दिल, गम में भी मुस्कुराना सिखा दिया। हमने तुमको दिल ये दे दिया। बेहद ही खूबसूरत ये गीत अभी आप सुन रहे थे गुनाह फिल्म से। प्रवीण भारद्वाज के बोल थे, आनंद राज आनंद का संगीत था। और अब चित्रपट तराने कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और शिल

जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, तेरे हवाले कर दिया। ये अभी आप सुन रहे थे सॉन्ग अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में। इनके गाए इसी सॉन्ग के साथ ही आज का हमारा यह हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न हुआ। लेकिन श्रोताओं, चलते चलते आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि हर रात के बाद एक उम्मीद भरी सुबह होती है, तो इस उम्मीद भरी सुबह के लिए, जी हाँ, कल की उम्मीद भरी सुबह के लिए आप सब मीठी नींद के गोते लगाइए, मीठी नींद के सागर में चले जाइए, डूब जाइए। और हम आप सब से अब लेते हैं यही इजाज़त। फिर मुलाकात होगी किसी दिन किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में 10:55 हुए हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं हमारी केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कल के कार्यक्रमों पर। कल आकाशवाणी संकेत धुन के साथ हमारे सभा की शुरुआत होगी 5:51 पर। 5:53 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम। आरंभिक उद्घोषणा 5:56 पर। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार आप सुनेंगे 6:00। आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम हम रिले करेंगे 6:05 से 7:30 तक। सुबह 7:30 पर सुनिएगा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। 8:45 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण और 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 से 10:00 तक सुनिएगा आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम रात में भी आप सुनेंगे 9:30 से रात 10:00 तक। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से 10:00 से। हमारे सासाराम केंद्र से साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान आप सुनेंगे 10:05 पर। 10:30 पर सुनेगा कार्यक्रम लोक माधुरी। रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग हम लेकर आएंगे 10:45 पर। 11:00 से लेकर अपराह्न 12:00 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुनेंगे 12 बजे अपराह्न आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार, 12:05 से 2 बजे तक आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम, दोपहर 2 बजे प्रादेशिक समाचार, 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से। आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार सुनिएगा 2:15 पर। 2:30 से शाम 5 बजे तक एक बार फिर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण। शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 5:10 पर वंदन कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति संगीत। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे कल शाम 5:30 पर। और किसान भाइयों बहनों के लिए सुनिएगा किसानवाणी कार्यक्रम शाम 6 बजे। सांझ गीत कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा भोजपुरी फिल्म संगीत का 6:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल आप सुनेंगे शाम 7 बजे। गुड इवनिंग रोहतास, ये सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 पर। 7:50 पर हम लेकर आएंगे फोन इन फरमाइशी का।

कार्यक्रम हेलो मनपसंद। रात 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या सुनेंगे आप। रात 9 बजे सुनिएगा लोकधारा। 9:15 पर कार्यक्रम महफिल। 9:30 पर विविध भारती से आज के फनकार। रात 10 बजे हमारे सासाराम केंद्र से रसरंग और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। हमारी सभा संपन्न होगी कल रात 11:10 पर। और आपको बता दें मौसम का हाल, तो कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान

0: समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। हमारी सभा संपन्न होगी कल रात 11:10 पर। और आपको बता दें मौसम का हाल, तो कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान कल न्यूनतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी समाचार के लिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विद्या राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े

0: Participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan in Somnath. Speaking to media, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit Parv, showcasing India's rich cultural and heritage traditions. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:56 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।